प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम् वंदे मुकुंद प्रियम् वंदे भक्त जनाश्रयम् च वरदम् वंदे शिवम् शंकरम्। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर विवादन, भगवान शिव की और उपासना हो रही है, साथ ही साथ भगवान शिव के गण भी जो हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः शास्ता विष्णोः परातनु महामोहात्मतनयो मधुमांसावस प्रियः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समेकामं प्रयच्छतु। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप सबके शासक और महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधु फल का गूदा और आसव जिन्हें बहुत प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी संपूर्ण इच्छा को परिपूर्ण करें। ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुंडा चंड विक्रमा एता वै मातरः सप्त सर्वलोकस्य मातरः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वर शासनात्। ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी ये सर्वलोक जननी सात माताएं परमेश्वर भगवान शिव के आदेश से मुझे मेरी और प्रार्थित वस्तु मुझे प्रदान करे। मत्तमा तंगवदनो गंगो मा शंकरात्मजः आकाश देहो दिग्बाहु सोम सूर्याग्निलोचनः। जिनका मत वाले हाथी के जैसा मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा सूर्य चंद्रमा और अग्नि जिनके तीन नेत्र हैं, ऐरावतादिभिर् दिव्यैर् दिग्गजैर् नित्यमर्चिता शिवज्ञान मदोद्भिन्न त्रिदशा नाम विघ्नकृत। ऐसे चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके तीन नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती रहती है, विघ्नकृत चासुरादीनां विघ्नेशः शिव भाविता सत्कृतः।

0: शिवयोराज्ञां समे दिशतु कांक्षितम्। जो देवताओं के विघ्नों का निवारण करते हैं और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, ऐसे विघ्नेश भगवान शिव हमारा कल्याण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। जो प्रमाद ग्रस्त है उसे वन में रहने पर भी पतन का भय रहता है, क्योंकि काम क्रोध आदि छह शत्रु सदा उसके साथ निवास करते हैं। परंतु जो जितेंद्रिय है और अपने आत्मा में ही रमन करने वाला है, उस विद्वान पुरुष का गृहस्थ आश्रम भी क्या अनिष्ट कर सकता है। मन की निर्मलता का महत्व। ब्रह्मसे सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वाम स्नात्वाम पुनः पुनः निर्मलम न मनो व्यथावस्तम निरर्थकम। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। उद्यम तो करना ही चाहिए। प्रयंतम शोचमेतम कार्य यदा सिद्धि न याति चेतन तदा तैव स्थितम चैव चिंतमाला लभ्यते बुध। प्रयत्न रूप उद्यम तो करना ही चाहिए, यदि सफलता न मिले तो बुद्धमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि देव यहाँ प्रबल है। विपत्ति में क्या करना चाहिए। महाविपत्तयो संसारे यम स्मरते मधुसूदनम विपतो तस्यम संपत्ति विद्यातम शंकर। जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्ति के समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। वियोग से खीन न हो। एकम वृक्षे सदा गात्रे नाना पक्षी समागता प्रभाते तो यम दिशा याते तत्र काम परिदेवता। जिस प्रकार नाना प्रकार के पक्षी रात्रि होने पर किसी एक वृक्ष का सदा आश्रय लेते हैं और प्रातःकाल होने पर विभिन्न दिशाओं में उड़ जाते हैं, उस वृक्ष को छोड़ने का पछतावा नहीं करते। उसी प्रकार संसार यात्रा पर आए हुए जीवों को मृत्यु काल में घर परिवार के वियोग से खिन्न नहीं होना चाहिए। ओम शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। आज ट्यूसडे 25 अगस्त 2026 के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोगों ने पाठ किया था कि सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं, देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट गया। तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं।

सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का स्मर कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं।

कहानी, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने पर भारी दुख हुआ था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भाई संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उपसव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं, हे कृपानिधार, आदर सहित उसे देखने जाऊं।

0: आई। इस पर शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने यानी तेरे पिता ने नियुता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। चलिए आज इसको यही विराम दूं, कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। ब्राह्मण पर्व के दौरान आर्य सभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत ऋग्वेद के 10वें मंडल के 135वें सूक्त का 3रा मंत्र। कुमार हे युवक, जब नया यम जिस रथम सवारी, मानव देह मनसा अपने मन से मन रूपी सारथी, अचक्रम जिसमें चक्र नहीं है, एक ईशम भोग का साधन, विश्वतः प्रांचम सब ओर से गति करने वाला आकृणह बना लिया है, अधिष्ठिस्तति सवार हो रहा है। अर्थात हे युवक, तुझे नया रथ प्रदान किया गया था, शरीर रूपी रथ पर चढ़कर तू अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, परंतु सांसारिक चकाचौंध की भूल भुलैया में तूने अपने उद्देश्य को भी भूल गया, तू लक्ष्यहीन होकर भटक गया। एक इशम वेद माता बता रही है कि हे पुत्र, तू भोग प्रवृत्ति में अपनी इच्छाओं से इस रथ माने शरीर को भोग विलास का साधन मात्र बना लिया। जिस शरीर रूपी रथ में प्रभु वास कर रहा है, यह तेरा रथ वासनामय बन गया है। अपश्चन अधितिष्ठति, तू इस रथ पर चढ़ा हुआ है, परंतु तू अंधा होकर के इसको चला रहा है। तुझे खुद पता नहीं कि तुझे कहाँ जाना है। अगर तेरी स्थिति यही रही तो यह रथ शरीर अवश्य तुझे किसी गड्ढे में गिरा देगा, तू पछताता रह जाएगा। वेद भगवान यही आदेश दे रहा है कि हे मानव, अभी भी समय है, तू सचेत और सावधान हो जा। तू अपने आप को संभाल ले, तू अपने मन को वासनाओं से दूर रख, तू प्रभु को जान ले जो तेरे अंतःकरण में हर क्षण वास करता है। तू विवेकी बनकर रथ पर सवार हो जा, तू पवित्र आत्मा बनकर निश्चय ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर। यह वही सवारी है जिसमें जीवात्मा बैठकर ऊपर उठता है। अथर्ववेद में यह बात आई है, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्तप्ते देवान यज्ञे नबोधय, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कृतिं यज्यमानश्च वर्धय। हम शरीर ढोते रहते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि यही सबसे उत्तम साधन है, उत्तम मंदिर है, ब्रह्मपुरी है तथा निराली अयोध्या है। शरीर को पहचानो, यही मानव धर्म है। इस शरीर रूपी मंदिर में स्वयं परमात्मा वास करता है, उसको जानने के प्रयत्न कर। अपने आप को ज्ञान के माध्यम से ऊपर उठ, प्रभु के दर्शन कर ले, जीवन सफल हो जाएगा।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रद्धेय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती त्वरिया राम भोजन का सादर नमस्ते। वेदों का स्वाध्याय सच्चे अर्थों में जीवन का निर्माण करना है। यजुर्वेद का मंत्र प्रस्तुत है।

शांति शब्दार्थ अदितेह अखंड अविनाशी परमात्मा के ते वे ही पुत्रासह पुत्र हैं जो मर्त्याय मनुष्यों के प्रजीव से जीवन लाभ के लिए सुख शांति के लिए जीते हैं और अजस्रम अविनाशी ज्योतिह प्रकाश प्रछन्ति प्रदान करते हैं। भवार्थ श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। इस वैदिक सूक्त के अनुसार यद्यपि सभी मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं परंतु इस मंत्र में ईश्वर के वास्तविक पुत्रों के चिन्ह बताए गए हैं। जो मनुष्य इन गुणों से युक्त हैं वस्तुतः वे ही प्रभु के पुत्र हैं, वे ही प्रभु के भक्त और उपासक हैं। ईश्वर का पुत्र वह है जो मनुष्यों के लिए जीता है। ईश्वर का सच्चा पुत्र वह है जो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है। ईश्वर का पुत्र वह है जो परोपकार के लिए जीता है। ईश्वर का पुत्र वह जो गिरों को उठाता है, जो मुर्दों में जीवन डाल देता है, जो रोती बिलकती और कहारती हुए मानवता को सुख शांति और जीवन का संदेश देता है। ईश्वर का पुत्र वह है जो अपने जीवन के आदर्श से, अपने विद्या से, अपने आचार और विचार से, अपने व्यवहार से मनुष्यों को प्रकाश और प्रेरणा देता रहे। ईश्वर का पुत्र वह है जो अज्ञान अविद्या अनाचार और पाखंड का नाश कर ज्ञान ज्योति जगाता रहे। श्रोताओं, हम सब प्रकाश और परोपकार को अपने जीवन में धारण कर ईश्वर के सच्चे पुत्र बने। ओम बृहस्पते प्रथम वाचो अग्रे यद प्रेरक नामधेयम दधाना यदेश।

0: ओम यज्ञा यज्ञा वो अग्नय गीरा गीरा च दक्षसे प्रप्रवयम् अमृतम् जातवेदसं प्रियं मित्रं नवंशिषम्।
1: विद्वान जनों का कर्तव्य है कि वे हर एक यज्ञ में सुमधुर वाणी से दिव्य शक्ति पाने के लिए प्रयत्न करें। जो शक्ति नाश रहित मनोहर और मित्र के समान है, उस शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे विद्वान लोग सभी से प्रीति उत्पन्न करते हैं और अपने कार्य को शांति के साथ साधते हैं, वैसे ही सभी को यथाशक्ति शुभ आचरण करना चाहिए।
0: ओम गाथपथिं मेधापतिं रुद्रं जलाशभेषजं तच्छंयो सुम्नमीमहे।
1: कोई भी मनुष्य परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के बिना स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा गाथपतिम है, अर्थात स्तुति करने वालों के रक्षक हैं। वही परमात्मा मेधपति हैं।

0: अर्थात यज्ञ परोपकार एवं पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों के रक्षक हैं। परमात्मा ने संसार में दुख एवं कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ तप योग एवं उपासना का मार्ग प्रशस्त किया है।
1: ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।
0: जिस धारणावती बुद्धि को देवता व विद्वान लोग चाहते हैं और पितर जानी जन जिस मेधावी बुद्धि की कामना करते हैं, वे सर्वोन्नति साधक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे आज ही मेधा बुद्धि का वरदान प्रदान करें, इसी जीवन में मुझे तेज बुद्धि से संपन्न करें। जिस बौद्धिक शक्ति को प्राप्त कर हमारे पितर और देवगण भगवान की उपासना में लगे रहे, मुझे वैसे ही मेधा शक्ति की प्राप्ति हो।

सर्वश्रेष्ठ तथा वरणीय परमेश्वर, आप मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करें। बुद्धि की शक्ति ही एक मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अग्निदेव जो सबको आगे ले चलता है और सबका कार्य सिद्ध करता है, मेधा बुद्धि प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हो।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6 बजे है।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम सुमहरा अकबर अली के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आदाब आपको सुमहरा।
1: नमस्कार आदाब। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय निदेशिका करीना ने जिससे पूर्व वित्त मंत्री रंगाना देन पड़ियाची और पुराने व्यापार मंत्री सुदेश कालीचंद के बीच फोन पर हुई बातचीत का मुद्दा कल पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पूछताछ का केंद्र रहा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को करीब 30 बिलियन रुपए की कीमत पर पेट्रोली कॉन्ट्रैक्ट देने के सिलसिले में एफसीसी जांच कर रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार प्रवीण जगनाथ ने फोन पर हुई बातचीत पर कुछ नहीं कहना चाहा क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठेके के सिलसिले में बात की और पुष्टि की कि एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने कॉन्ट्रैक्ट देने पर मंजूरी दी। अंडर वार्निंग पूछताछ के बाद प्रवीण जगनाथ को जाने की इजाजत दी गई। सांसद वेरोनिक ले गोविंद के पति गुलशन गोविंद को जमानत पर रिहा करने पर एतराज जताया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कैजनोयाल के बाशिंदों के साथ उनके रिश्तों के मद्देनजर और मुख्तलिफ स्कीपरों के साथ उनके ताल्लुकात से शायद वो फरार हो जाएं। प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि रिनजापू से सीसीटीवी तस्वीरों से मुजरिमाना पहलू सामने आए हैं। आज मुल्क भर में इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद की मिलाद मनाई जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले जा रहे हैं और जश्न किए जा रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर की 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के आखिरी पैगंबर की पैदाइश हुई थी। कई दूसरे मुल्कों की तरह मुशरस में खास तकरीबों का इनेकाद किया जा रहा है। कैंसर के इलाज के लिए ज़रूरी दवाओं में कल एक दवा उपलब्ध कराई गई। बाकी के की दो दवाओं की कमी के चलते नेशनल कैंसर सेंटर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक आपात बैठक भी बुलाई गई और इस हालत की वजहों का पता लगाया गया। मंत्री अनिल बिचू ने कहा कि दवाओं की खरीद के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान की अर्थनीति को सीमित बनाएगा। वो उसके तजारती साझेदारों को निशाना बनाएगा क्योंकि मध्य पूर्व की जंग में कोई नया मसौदा सामने नहीं आया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी और दोपहर बाद पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटों में रह रहकर बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान आसमान साफ होगा और हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगुनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 13 से

0: से 15 अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 17 से 19 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूरज 6:25 पर उगेगा और शाम को 5:59 पर सूरज ढल जाएगा।
1: RL3 Radio.

या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा तो हमने उससे बाग उगाए रौनक वाले, तुम्हारी ताकत ना थी कि उनके पेड़ उगाते, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है, बल्कि वो लोग राह से कतराते हैं। या वो जिसने जमीन बसने को बनाई और उसके बीच में नहरें निकाली और उसके लिए लंगर बनाए और दोनों समंदरों में आड़ रखी, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है, बल्कि उनमें अक्सर जाहिल हैं।

आचार की सुनता है जब उसे पुकारे और दूर कर देता है बुराई और तुम्हें जमीन के वारिस करता है। क्या अल्लाह के साथ और खुदा है? बहुत ही कम ध्यान करते हो। या वो जो तुम्हें राह दिखाता है खुशकी और तरी की अंधेरियों में और वो के हवाएं भेजता है अपनी रहमत के आगे खुशखबरी सुनाती। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बरतर है अल्लाह उनके शिर्क से। या वो जो खल्क की इब्तिदा फरमाता है फिर उसे दोबारा बनाएगा और वो जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी देता है क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? तुम फरमाओ कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो।

तुम फरमाओ खुद गैब नहीं जानते जो कोई आसमानों और जमीन में है मगर अल्लाह, और इन्हें खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। क्या उनके इल्म का सिलसिला आखिरत के जानने तक पहुंच गया? कोई नहीं, वो उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि वो उससे अंधे हैं। और काफिर बोले, जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे क्या हम फिर निकाले जाएंगे? बेशक उसका वादा दिया गया हमको और हमसे पहले हमारे बाप दादाओं को, ये तो नहीं मगर अगलों की कहानियां।

तुम फरमाओ जमीन में चल कर देखो कैसा हुआ अंजाम मुजरिमों का, और तुम उन पर गम न खाओ और उनके मकर से दिल तंग न हो। और कहते हैं कब आएगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। तुम फरमाओ करीब है कि तुम्हारे पीछे आ लगी हो बाज वो चीज जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, और बेशक तेरा रब फजल वाला है आदमियों पर, लेकिन अक्सर आदमी हक नहीं मानते। और बेशक तुम्हारा रब जानता है जो उनके सीनों में छुपी है और जो वो जाहिर करते हैं।

और जितने गैब हैं आसमान और जमीन के सब एक बताने वाली किताब में हैं। बेशक ये कुरान जिक्र फरमाता है बनी इसराइल से अक्सर वो बातें जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और बेशक वो हिदायत और रहमत है मुसलमानों के लिए। बेशक तुम्हारा रब उनके आपस में फैसला फरमाता है अपने हुक्म से, और वही है इज्जत वाला इल्म वाला। तो तुम अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तुम रोशन हक पर हो। बेशक तुम्हारे सुनाए नहीं सुनते मुर्दे। तफसीर खजानुल इरफान में है, मुर्दों से मुराद यहाँ कुफार हैं जिनके दिल मुर्दा हैं, और ना तुम्हारे सुनाए बहरे पुकार सुने जब फिरें पीठ देकर।

सलाम कसरत से पढ़ें, तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, नवाफिल पढ़ें, गरीबों मिस्कीनों यतीमों को खाना खिलाएं, उनकी मदद करें।

महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद का, उसे सेलिब्रेट करने का एक मकसद है, और वो मकसद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत है, उसकी मदद है, उसकी ताईद है, और सुन्नतों को आम करना है, हुजूर सलाम की शरीयत पर अमल की तलकीन करना है। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि कुल उम्मती यदखुलून अल्जन्ना इल्ला मन अबा, क़ील मन अबा, قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى। आपने फरमाया कि मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में जाएगा, सिवा उसके जिसने इनकार किया। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये इनकार करने वाला मुनकिर कौन है? तो आपने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की, मेरे अहकाम को माना, मेरी बातों को माना, मुझे फॉलो किया, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने इनकार किया वो दोज़ख में जाएगा। यकीनन हुज़ूर सलाम की इताअत, हुज़ूर की इत्तेबा, हुज़ूर की पैरवी, हुज़ूर को फॉलो करने से इंसान जन्नती बनता है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत से, हुजूर की इत्तेबा से, पैरवी से, हुजूर को फॉलो करने से, रूगर्दानी करने से इंसान जहन्नमी बनता है। एक और हदीस है, हुजूर ने फरमाया मन अताअनी फ़क़द अताअल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह के रसूल की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी यानी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये है मुकाम इत्तबाए मुस्तफ़ा और मुकाम इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ज़रूरत इस बात की है कि फ़कत महफ़िलें न सजाएं, फ़कत मजालिस मुनाकिद न करें, सबसे पहले ये देखें कि मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या होना चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जल्ला मजदहू, उसके रसूल की रज़ा है, इताअत है, इत्तेबा है और पैरवी है। अल्लाह जल्ला मजदहू के हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद भी यही है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब आई। सिर्फ नूर नहीं आया, सिर्फ नबी नहीं आए, बल्कि साथ साथ एक किताब भी आई है जिसको अल्लाह ने रोशन किताब कहा है। तो किताब का मकसद क्या होता है? किताब का मकसद होता है आपको पूरा निज़ाम देना, पूरा सिस्टम देना, और नबी का मकसद क्या होता है, रसूल का मकसद क्या होता है, उसके भेजे जाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ये है कि उस पूरे निज़ाम की एक प्रैक्टिकली फॉर्म, उस पूरे निज़ाम की एक अमली शक्ल, अमली सूरत, जिसे आप जानते हैं कि एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल। तो इस्लाम ने फ़कत थ्योरी नहीं दी है या सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ दोनों चीज़ें हैं, कुरान थ्योरी है और हुजूर इस्लाम प्रैक्टिकल है, तब जाके इससे पूरा एक सिस्टम इस्टेब्लिश होगा, इससे पूरा एक निज़ाम कायम होगा, और फिर हुजूर इस्लाम को अल्लाह पाक ने नूर फरमाया है, नूर रोशनी, यानी आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस को, जिसकी अदा अमल और एक्शन को, वो कोई आम नहीं है, वो नूर है, रोशनी है।
उनकी ताज से, इत्तेबा से, उन

0: पर ईमान से, उनकी नुसरत से, उनकी ताईद से आपको भी रोशनी नसीब होगी, नूर नसीब होगा। जिस किताब को आपके लिए एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर, कोड ऑफ लाइफ के तौर पर पेश किया गया, वो आम किताब नहीं है, वो किताब मुबीन है, रोशन किताब है। किताब मुबीन का एज़ाज़ अल्लाह के क़ुरान, अल्लाह की किताब को हासिल है। तो इसलिए ये नुक्ते हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह पाक ने नबी को भेजा है, उसका एक मकसद है, किताब दी है, उसका एक मकसद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताईद करें, उसकी नुसरत करें। ताईद और नुसरत यही है कि ख़ुद अमल करें और बाकी लोगों को उस पर अमल की तलकीन करें। अल्लाह जल्ल मजदहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन दुरूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसमें जो गलतियाँ हो गईं, जो कोताहियाँ हो गईं, जो गफलत हुई, अल्लाह ताला अपने फ़जल से उसे माफ़ फरमाए। और अल्लाह पाक हमें सुबह शाम जलवत खलवत हर हाल में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस सजाने की, ज़िक्र व तज़किरे की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से रोशन व मुनव्वर बनाए। वमा अलैना इल्ला अल बला।
1: सामिन, इस वक्त हम आरएम फ्री से आपसे मुखातिब हैं और सबाल खैर प्रोग्राम जारी है। दुनिया में बेशुमार नाम आए और गुजर गए, मगर एक नाम ऐसा है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने खुद बुलंद फरमाया, वरअफाना लका ज़िक्रक, और हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। आज 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद दुनिया के हर खत्ते में अजान की आवाज़ बुलंद होती है, मस्जिदों में दरूद पढ़ा जाता है, घरों में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान होती है, और करोड़ों दिल एक ही नाम पर धड़कते हैं, और वो है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नाम नहीं, ये ईमान की पहचान, मोहब्बत की ज़बान और दिलों का सुकून है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाम जिसका है, वो नाम ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर एक दिल को सुकून है सुबह शाम।

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया, पड़ोसी के हकूक बताए, वालिदैन की इज्जत सिखाई, यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखा और फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई है। अगर हमारे घरों में मोहब्बत चाहिए, हमारे मुआशरे में अमन चाहिए और हमारी ज़िंदगियों में बरकत चाहिए तो हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपनाना होगा। मोहम्मद की मोहब्बत ज़िंदगी की रोशनी बन जाए तो हर मुश्किल सफ़र आसान, हर मंजिल हसीन बन जाए।

చంటి పాపల్లే ఉండాలి అన్నకు థాంక్స్ చెప్పాలి సరేనా

0: पची सानू दर्द हाँ पड़े जा रे तारी बूम आख नाक कान बदु थाए मारू सुन ढोलक ना ताले आरती ना टाने तारी मूरत ने लगाड़ी मैं कुम कुम तो
1: नहीं मानू कुमकुम जे पत्थर माए जीव भरी दे ललाटे लागे तो आयु वधारी दे ने जे मुंगा नहीं बोलता करे
2: yes!

94.6, 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો.

शक्ति। मंगलवार 25 अगस्त रेडियो मनोरंजन पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। श्रोताओं, कहते हैं हर एक दिन का आरंभ अगर हम एक अच्छे विचार के साथ करें तो पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। तो चलिए एक अच्छे विचार के साथ और अच्छी भावनाओं

के साथ भगवान गणेश का नाम लेते हुए मन में यही प्रार्थना हम करते हैं कि आज पूरे दिन जो है ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन पे रहे और जो कुछ हो उसमें ईश्वर की इच्छा छुपी हो, इसी बात का ध्यान रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

श्रोताओं, आज मंगलवार है। मंगलवार का जो दिन है हनुमान जी को अर्पित होता है। बजरंग बली जो है सबका कल्याण करते हैं। बजरंग बली की यदि हम बात करें तो शक्ति का तो प्रतीक है ही वे, साथ ही भक्ति का भी प्रतीक है। और किस तरह से राम काज के लिए आतुर रहते हैं, हर एक कार्य को किस तरह से बड़े ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ और बड़ी ही निष्ठा के साथ हर एक कार्य को करते हैं, तो भगवान हनुमान जी की कृपा भी आप सबके जीवन पर रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए इस भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे

श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कहते हैं भगवान राम का नाम लेने से भगवान राम की तो कृपा हमें मिलती ही है, साथ में हनुमान जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि जहाँ पर भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, किसी न किसी रूप में हनुमान जी भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो चलिए राम नाम का गुणगान करते हैं, हनुमान जी के साथ साथ राम जी की कृपा को भी हम प्राप्त करते हैं।

दिव्य शक्ति इस कार्यक्रम में आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए आभार। कहते हैं जीवन में दुविधाएं सबके आती हैं, जीवन में परेशानियां सबके आती हैं, दुख सुख के इस चक्र से कोई नहीं निकल सकता है। जब तक हम जीते हैं उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं परिवर्तन जीवन का नियम है, तो किसी भी बदलाव से हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हर एक स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है वहीं सकारात्मकता होती है और वहीं पर ईश्वर का भी आशीर्वाद होता है।

भक्ति में शक्ति। तो श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के हम लगभग अंत तक आ गए हैं। मंगलवार का दिन है, तो चलिए हनुमान चालीसा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। जहाँ कहीं से भी आपने हमारा साथ दिया, आपके इस साथ के लिए बहुत बहुत आभार। इस अंतिम प्रस्तुति के साथ हमारी आपकी भेंट जो है समाप्त हो जाएगी। 11:30 बजे से आप चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे, तो अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सब को हमारी ओर से। भक्ति में शक्ति।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार
1: नमस्कार आदाब स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर निशान मोहिपत को 6 महीने कैद की सजा दी गई है आज इंटरमीडिएट अदालत में मैजिस्ट्रेट जेड एंगन चाइकिंग ने पाया कि एक महिला पुलिस पर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहिपत ने बदतमीजी की थी जॉन डैनियल पेरिन पर कत्ल करने का अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज है वो 31 अगस्त को फिर से अदालत के सामने पेश होगा उसे फिलहाल ब्राउनसिक और मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया आज छोटे से आद्रियानो किलियानो पेरिन के अंतिम संस्कार किए जाएंगे दिलों में मोहब्बत और इस्लाम से अकीदत लेते हुए आज मुस्लिम कौम ईद मिलादुन्नबी मना रही है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दुनिया की सबसे बड़ी रहमत का दर्जा देकर खुदा ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख पर बीबी आमिना को एक बेटा दिया था इस्लाम के हवाले से हज़रत मोहम्मद पाक को नेक सीरत के मालिक थे 40 साल की उम्र में आप पर कुरान पाक की आयतें नाजिल फरमाई गई थीं फिनिक्स के अलीमिया कॉलेज में यौम-उन-नबी बड़े रूहानी अंदाज में मनाया गया और मौके पर मोहम्मद अनस सिद्दीकी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम मंत्री शकील मोहम्मद खास मेहमान कल रात मोन साहिल पर एक एलिफेंट सील नजर आया लक्स होटल के पास उसे देखा गया फौरन स्ट्रैंडेड मामल प्रोटोकॉल को लागू किया गया नेशनल कोस्ट गार्ड और फिशरीज प्रोटेक्शन सर्विस ने जानवर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए रात भर उस पर निगरानी रखी गई आलबियों अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने आज सुबह उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन किया अधिकारी जनता से मांग करते हैं कि वो उसके करीब जाने की कोशिश न करे विदेश में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान की अर्थनीति को सीमित बनाएगा और उसके सभी तिजारती साझेदारों को निशाना बनाएगा अमेरिका का दावा है कि वो ईरानी अर्थव्यवस्था को मुश्किल परिस्थितियों में डालने के लिए उससे जुड़े सभी देशों पर नई पाबंदियां लागू करेगा अमेरिका के प्रतिबंधों को रोकने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है ईरान के वित्त मंत्री अली मदनी जादे ने कहा कि उनके देश ने 2 सालों की योजना बना ली है मदनी जादे ने यह भी कहा कि चीन और रूस ने अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया है तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए सोहन लेन गोंद पॉइंट पीमो में 57 साल की 57 years old श्रीमती दुलहंती गोपी जो विश्वानी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल 10:30 बजे कल दिन के 10:30 बजे के घर सोहन लेन गोंद पॉइंट पीमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट पीमो की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM शोक में डुबे परिवार से हमें हमदर्द

0: सुहाना सफर।
1: मंगलवार 25 अगस्त रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। सुहाना सफर इस प्रोग्राम की शुरुआत यहां से होती है और आज का ये सफ़र बहुत ही खास होने वाला है और हमें पता है इस खास की वजह क्या है, ये आपको भी पता है। आज जो है हमारे रेडियो की पहली एनिवर्सरी है और रेडियो मनोरंजन के हमारे सभी सुनने वालों का, हमारे सभी फॉलोअर्स का हम धन्यवाद देते हैं। इस एक साल के अंतर्गत इतना आपका प्यार हमें मिला है कि क्या कहे। तो बस आपका ये प्यार और विश्वास हमेशा हमारे साथ बना रहे ऐसी उम्मीद करते हैं और ये दो घंटों का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: तो दोस्तों दोपहर का वक्त है, इस समय लंच करते करते सुहाना सफर इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, अच्छे खाने के साथ साथ अच्छा गाना हो तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, और गाने तो है ही कमाल के। तो चलिए अगला जो तराना है आशा जी, किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में होगा, और ये खूबसूरत सा गीत कालिया फिल्म से लिया गया है। तो चलिए इस गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

गई है, पहली एनिवर्सरी है आज और बहुत कुछ होने वाला है। और कल जो है हमारा एक रोड शो होगा और देश के कई इलाकों में हम जाएंगे, हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे हमें मिलने का मौका मिलेगा, तो आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, आपको हम जानकारियां जो है देते रहेंगे। तो अभी के लिए चलिए गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं। लता जी की आवाज़ में ज्योति फिल्म का ये तराना आप सभी के नाम।

0: खाना सफर खाना सफर।
1: कहते हैं ना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, यकीनन आपका साथ है तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, और हमारे सभी प्रोग्रामों के साथ आप जुड़ते हैं, बड़े ही प्यार से साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, आपका ये जो विश्वास है हमारे ऊपर यूं ही बना रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और सुहाना सफ़र ये जो प्रोग्राम है दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच हर रोज़ चलता है रेडियो मनोरंजन पर। बहुत से लोग इस समय घर से साथ दे रहे हैं, बहुत से लोग जो है हमारे दोस्त जो है लंच टाइम का फ़ायदा उठाकर हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, गानों को गुनगुनाते हैं। तो चलिए ये लवली सा तराना आप सभी के नाम करते हुए प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: तो दोस्तों, इस अगले गाने के साथ जो है हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार हमारी आपकी मुलाकात होगी सुहाना सफर के दूसरे घंटे में। तो ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मनोरंजन

0: सुनते देश विदेश की खबरें आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को नमस्कार। डॉक्टर निशान मोहिपत को इस मंगलवार को इंटरमीडिएट कोर्ट द्वारा 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ये सजा मजिस्ट्रेट जे दिनांग चाय किंग द्वारा तब सुनाई गई जब प्लास्टिक सर्जन को 7 जुलाई 2026 को एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ गलत व्यवहार करने का दोषी पाया गया था। घटना 29 अप्रैल 2022 की है और ये एक निजी क्लिनिक में परामर्श के दौरान हुई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, जो उस समय 29 वर्ष की थी, डॉक्टर निशान मोहिपत ने उनकी सहमति के बिना उनके स्तनों को छुआ था और कई बार उन्हें चूमा था। डॉक्टर ने खुद को निर्दोष बताया था और उनके बयान को चुनौती दी थी। अपने फैसले में मजिस्ट्रेट जेड चाइकिंग ने मुख्य रूप से घटना के बाद हुई व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया था। अदालत ने माना था कि शिकायतकर्ता अपने बयान के मुख्य बिंदुओं पर सुसंगत बनी रही थी। सजा पर बहस के दौरान प्रिंसिपल स्टेट काउंसिल वकील दामोदर सिंह बिसेसर ने कारावास की सजा की मांग की थी। डॉक्टर निशान मोहिपत के वकील निर्मल बस गोपाल ने बिना जेलवासी वाली सजा के पक्ष में दलील दी थी। डॉक्टर निशान मोहिपत ने इस बात पर जोर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखते हैं। डॉक्टर मोहिपत के लिए उनके वकील ने फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। मॉरिशस और ब्रिटिश दोनों पासपोर्ट रखने वाली 21 वर्षीय एक युवती को सोमवार 24 अगस्त को एसएसओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजसू के एक अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार स्थिति खुशबा की रहने वाली संदिग्ध दुबई से आ रही थी, तभी उसे कस्टम्स अधिकारियों के सहयोग से राजसू के कर्मियों ने रोक लिया। पुलिस ने उसके सामान से खिलौनों के 3 डिब्बे बरामद किए, जिनमें कृत्रिम गंध वाला एक पेस्ट जैसा पदार्थ था जिसके सिंथेटिक ड्रग्स होने का संदेह है। जांचकर्ताओं को दी गई जानकारी के अनुसार जब्त की गई मात्रा लगभग 3.1 किलो है, जिसका मूल्य लगभग 50 मिलियन रुपए है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और 25 पाउंड स्टेलिंग का एक नोट भी जब्त किया गया है। और विदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 से 30 अगस्त के बीच भारत के बड़े हिस्सों में बारिश, आंधी, तूफान और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है। साथ ही कई राज्यों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3 You're listening to RM3 Radio Manoranjan. हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।

0: सुहाना सफर।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुहाना सफर का ये सेकंड आवर है जहां कहीं से भी आप साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं गानों का ये जो सिलेक्शन है इसे आप एंजॉय कर रहे होंगे और अगला तराना भी उतना ही खूबसूरत है। चलिए साथ मिलकर गुनगुनाते हैं और इस सफर को यादगार बनाते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: दोस्तों पुराने गानों की बात करें तो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, चीज़ें जितनी पुरानी होती है उनकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। अगला जो गाना है वो भी कुछ ऐसा ही है, सूरज फिल्म का ये तराना, रफ़ी साहब की आवाज़, और हमें पता है बहुत सारे लोग इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए ये तराना रफ़ी साहब के सभी फैंस के नाम चल पड़ा।

डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए, हमारा एक साल का ये जो सेलिब्रेशन है, इसमें आप लोग हैं तो हमारी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं और प्यार भरा साथ यहाँ पर यूं ही आगे हमें मिलता रहे। और प्यासा सावन का ये जो अगला तराना है, इन हसीन वादियों से आप सभी के नाम हम करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो लेडीज़ है जो घर पर जो है इस समय लंच के बाद हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारा साथ दे रही है, गानों का मज़ा उठा रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा।
1: पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्धाने आरएम 2 अने आरएम 3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ।
2: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
3: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु।
4: इनिय मुदल आंडु निरेवु नलवाटुकल ऑरेंज फ्री ऑरएम 2
5: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
6: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।
7: साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन।
8: You're listening to RM3 Radio Man.

0: खाना सफर।
1: चलिए, दिन अपने आप में खास हो ही जाता है जब कोई भी खुशी का मौका हो और इसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने लोग हो और आप है तो हमें किस बात की कमी है, है ना। तो चलिए, ऐसे में अगला जो तराना है, हरजाई फिल्म का ये गाना होगा आप सभी के नाम।

0: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाढ दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा।
1: पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्धाने RM2 अने RM3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ।
2: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
3: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु।
4: इदिय मुदल आंडु निरेवु नलवाटुकल ऑरेंज फ्री RM2
5: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
6: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: तो दोस्तों, देखते ही देखते सुहाना सफर इस प्रोग्राम के लगभग अंत तक आ गए हैं और इस फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आप सबका प्यार भरा साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गानों को एंजॉय किया, दो घंटे के इस सफर को आपने एंजॉय किया, इसके लिए धन्यवाद। और चलिए इस गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात खत्म हो जाएगी, लेकिन जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार आप सभी को सुमी की ओर से।
2: You're listening to RM3 Radio।

0: Center. Kya gaya hai? Moshe so seshes ki beech sansadiya sahyog, seshes ki rashtra sabha ki speaker Azarel Ernesta ko is mangalwar ko unki moshe ki samkaksh shirin Omirudi Zifra dwara swagat kiya gaya. Is adhyayan yatra ka uddesh dono sansthano ko apni karya pranali ki tulna karne aur sansadiya taur tarikon ko sajha karne ka avsar pradan karna hai. और विदेश में दक्षिण फ्रांस के गांवों में एक विनाशकारी बवंडर ने तबाही मचाई है जिसमें 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार शाम तक लगभग 2800 घरों में बिजली नहीं थी जबकि कई सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

रेडियो मनोरंजन के हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, उड़ान की कहानी कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हो चुकी हूँ और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के इस लाजवाब कार्यक्रम में बिल्कुल हम पहले तो आप सभी को ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि आज हमारे एक साल की वर्षगांठ है रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की। तो हमारे सभी

0: लिसनर्स का बस हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके सहयोग के बिना ये रेडियो यहां तक नहीं पहुंच पाया होता। और आज जहां हम उड़ान की कहानी की बात करते हैं, सशक्त महिला की कहानी की बात करते हैं, वहां हर बार हम एक महिला के साथ कार्यक्रम करते हैं, पर आज के कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, छः छः महिलाएं आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी। और जहां पर हम समाज के महिलाओं की बात करते हैं, आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे उन महिलाओं के साथ जो हमारे MBC रेडियो स्टेशन में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और पर्दे के पीछे रहकर हमें बहुत सहयोग देती हैं। और हमारे हर कार्यक्रम में कुछ ऐसी अनाउंसर्स भी हैं जो आपका हमेशा मनोरंजन करती हैं। तो आइए सर्वप्रथम आज के पहले पैनल में हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे निष्ठा मतहुआ और दीपशिका बुदाहुका, जो हमारे साथ मंच पर उपस्थित हो चुकी है। नमस्ते निष्ठा। नमस्ते दीपशिका।
1: नमस्ते रत्ना।
0: और आज के इस कार्यक्रम में निष्ठा, जो हमारी एडमिन टीम की हेड है, और साथ ही साथ दीपशिका, जिनका नाम आप हमेशा सुनते रहते हैं, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट जो बहुत हमारा सहयोग देती है आज के इस कार्यक्रम में। आइए शुरुआत करते हैं निष्ठा के साथ। निष्ठा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू रत्ना, सबसे पहले कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं रेडियो डिपार्टमेंट में 7 साल से हूँ, 7 साल से काम कर रही हूँ। 2019 में मैंने ज्वाइन किया।
0: ओके, और आपका ये जो सफ़र रहा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा निष्ठा, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने क्या सब सीखा इन सालों में।
2: तो सबसे पहले जब मैं MBC में आई थी, तो सबसे पहले मैंने MBC जो रेडियो डिपार्टमेंट ओरिएंटल सेक्शन मैंने ज्वाइन किया।
0: हाँ,
2: मुझे तो कुछ नहीं आते थे रेडियो के बारे में, लेकिन यहाँ इतने सारे टीम वर्क, मैनेजमेंट सपोर्ट और जो ट्रेनिंग मुझे मिला, तो यहाँ मुझे बहुत कुछ मिलने सीखने को मिला।
0: हाँ,
2: बहुत
0: हाँ।
2: कुछ सीखने को
0: और
2: मिला।
0: और निष्ठा, आपने जो चैलेंजेस देखे, क्या क्या टाइप के चैलेंजेस आपके सामने आए?
2: चैलेंजेस तब थे जब साइक्लोन के पीरियड या कोविड के पीरियड हमने काम किया, कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, प्रोग्राम शेड्यूलिंग सब कुछ बदल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, मील अलाउंस, ये सब स्टाफ के लिए कैसे प्लान करना है, ये सब मैंने सीखा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जब एक लिसनर फ़ोन करते हैं फीडबैक देने के लिए, कैसे ये भी संभालना पड़ता है।
0: पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिक्स।
2: पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ठीक है, हम खुश हो जाते हैं, अगर नेगेटिव तो क्या करना चाहिए इस कंप्लेन के साथ, ये सब यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा।
0: और यानी हर टाइप के प्रोग्राम, यानी यहाँ पर हमारे रेडियो स्टेशन में लगभग 13 भाषाएं हैं।
2: हाँ।
0: तो हर भाषा के लिए आप प्रोग्रामिंग करती हैं, हर भाषा के अनाउंसर्स का जैसे किस तरह से उनका शेड्यूल होता है, रोस्टर तैयार करना, ये सारी चीज़ें।
2: हाँ, यहाँ जब मैंने सीखा होस्टर और उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये सब मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ थे। तो यहाँ उन लोगों के फेस्टिवल, डिफरेंट रिलीजन का फेस्टिवल, कैसे क्या होता है इसमें, कैसे ये प्रोग्राम में चलते हैं, ये सब हमने यहाँ ट्रेनिंग मिलकर सीखा है।
0: बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये बहुत ही टफ काम है, क्योंकि हर एक धर्म के हर एक पर्व को, हर एक भाषा के पर्व को कहाँ पर कैसे शेड्यूल करना है, ये मैं समझती हूँ बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा।
2: लेकिन ये जो टीम वर्क और जो मैनेजमेंट सपोर्ट हमें मिलता है, और आपके खुद जो आपके जो मोटिवेशन है ये सब करने के लिए, सब आसान हो जाता है।
0: बहुत कुछ नया सीखना हाँ। है और बहुत कुछ अभी आगे और सीखना है। तो जैसे आप एक महिला हैं, वुमेन हैं, वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है, और आप कैसे सारा कुछ बैलेंस करती हैं काम और घर एक महिला होने के नाते?
2: तो पहले तो मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि काम आप थक जाते हैं, आपका घर जाना है, घर को संभालना है और बच्चे को भी संभालना है।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन जब आप अपने काम को पसंद करते हैं तो आप मैनेज भी कर सकती हैं, बच्चे ये सब और फैमिली सपोर्ट, ये सब
0: बिल्कुल मैं समझती हूँ। फैमिली के सपोर्ट के बिना ये बहुत ज्यादा मुश्किल, अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो मैं समझती हूँ ये बहुत ज्यादा
2: मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी। तो चलिए आज हम बात करेंगे दीपशिका के साथ, जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं। पहले तो दीपशिका, आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया, थैंक यू सो मच। और मैं समझती हूँ हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन काम करना आसान नहीं होता, हर एक चीज का कोऑर्डिनेशन रखना आसान नहीं होता। तो आज बतौर एक प्रोडक्शन असिस्टेंट वे रेडियो टीम के साथ जुड़ी हैं। दीपशिका, आपको कितना टाइम हुआ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी।
1: मैंने MBC को 7 साल से यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ।
0: हाँ हाँ। हाँ, और मैं समझती हूँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी हमारे लिसनर्स को कि

0: दीपशिखा ने जब एमबीसी ज्वाइन किया था बतौर एक तेलुगु अनाउंसर उसने ज्वाइन किया, तो पहले तेलुगु भाषा में बात करना और आज आप हिंदी भी फर्राटेदार बोल लेती हैं दीपशिखा, ये कैसे किया आपने?
1: रोज़ मैं सुनती हूँ आप लोग हिंदी बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा
0: थोड़ा थोड़ा मतलब सीख लिया कहीं ना कहीं। कहते हैं ना कि जो फ्रेंड्स का असर होता है, फ्रेंड्स के कंपनी का जो असर होता है वो कहीं ना कहीं आप में भी वो बदलाव लाता ही है। तो मैं पूछना चाहूँगी आपको कि जैसे आपने टीवी पहले रेडियो के साथ आपने ज्वाइन किया, फिर आप टीवी प्रोग्रामिंग में भी आपने काम किया है और अब आप हमें हमारे रेडियो टीम के साथ जुड़ी हैं एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट, तो आपने क्या डिफरेंसेस नोट किए?
1: हाँ, मैंने अपने कार्य की शुरुआत तेलुगु अनाउंसर के तौर पर की थी।
0: हाँ,
1: उस वक्त रेडियो के थ्रू लिसनर्स से कनेक्ट करना मेरे लिए एक नया और बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था।
0: हाँ,
1: बाद में मुझे प्रीव्यू ऑफिसर मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पर काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला
0: जी,
1: जहाँ प्रोग्राम्स को एक अलग ही पर्सपेक्टिव में से समझाने का मौका मिला है। तो आज मैं रेडियो डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। हर पोजीशन ने मुझे कुछ नया सिखाया है, तो इसी वजह से मेरा प्रोफेशनल जर्नी बहुत ही एनरिचिंग रहा है।
0: बहुत एनरिचिंग के साथ साथ बहुत ही दिलचस्प रहा है। और मैं समझती हूँ जैसे एंथुसियासम से भरा जब काम हो तो काम काम नहीं लगता, फिर वो एक खेल की तरह होता है। और दीपशिखा, आपने अब तक कौन कौन से चैलेंजेस को कैसे कैसे फेस किया है?
1: जैसे हर प्रोफेशन की तरह ब्रॉडकास्टिंग में भी चैलेंजेस होते हैं, कभी टाइट डेडलाइंस, कभी लाइव प्रोग्राम्स, कभी लास्ट मिनट चेंजेस, कभी टेक्निकल इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। तो लेकिन इन चैलेंजेस ने मुझे प्रेशर में कानी काम करना और सिचुएशन के हिसाब से क्विकली अडाप्ट करना सिखाया है। सबसे इम्पोर्टेंट है टीम स्पिरिट, एक दूसरे को सपोर्ट करना है।
0: बिल्कुल, और बिल्कुल हंसते चेहरे के साथ सपोर्ट करना है, क्योंकि कई बार होता है कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज़्यादा सिचुएशन टाइट हो जाती है कि किस तरह से, और मान लीजिए आप रेडियो पर काम कर रहे हैं या टीवी पर काम कर रहे हैं, तो कई बार लाइव सिचुएशन यानी रेडियो लाइव चल रहा है और बीच में कोई समस्या आ जाती है, तो किस तरह से उसे हैंडल करना, ये हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट वालों का काम होता है। और वैसे हम आपको ये भी बताते चले, हमारे टीम में प्रोडक्शन असिस्टेंट पर दीपशिखा भी है और साथ ही साथ उरुसा बानू जो आज नहीं आई है। पर चलिए इसी के साथ निष्ठा, आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? वन ईयर यानी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साल की वर्षगांठ, तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं ORMQ ORM फ्री रेडियो मनोरंजन को हैप्पी एनिवर्सरी कहना चाहूँगी और हमारे लिसनर्स ऐसे ही हमें सुने हमारे प्रोग्राम को, एंड हम हर जगह सब लोगों हमें जाने, तो यही हमारी विश है कि जहाँ भी हम जाए लोग हमें प्यार करें और हमारी रेडियो ऐसे ही सक्सेसफुल रहे।
0: बिल्कुल, अपने सपोर्ट के साथ जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है उसके साथ हमें एक्सेप्ट करें और ग्रो करने में हमारी
1: लिसनर्स हैं तो हम भी हैं।
0: हम भी हैं, बिल्कुल। और दीपशिखा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: रेडियो की एनिवर्सरी के इस खास मौके पे मैं अपने सभी लिसनर्स जो हमें सुनते हैं रोज, उन लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उन लोगों के प्यार, सपोर्ट और फीडबैक भी हमें हर दिन बेहतर करने का मौका, मोटिवेशन भी देता है।
0: बिल्कुल,
1: तो रेडियो और लिसनर्स का रिश्ता बहुत खास है। ये सिर्फ एक कनेक्शन ही नहीं है बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड भी है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे प्रोग्राम्स को सुनते रहिए। आप सभी को रेडियो एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच। और निष्ठा और दीपशिखा हमारे साथ बने रहे, बिल्कुल आज हमारे टीम में हमारे साथ टेक्निकल पर भी हमारा साथ दे रही हैं अपर्णा, और हमारे प्रोड्यूसर हैं बिल्कुल सत्यन भरत जी, और अभी थोड़ी ही देर में दीपशिखा भी बिहाइंड द सीन से हमारा साथ देंगे एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारी अगली पैनल के साथ, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी उर्दू अनाउंसर सैयदा नाजिया सुबाई और हमारी गुजराती अनाउंसर अमिता सिबरद। बने रहे हमारे साथ, गीत के बाद उपस्थित होते हैं थोड़ी ही देर में।

0: की कहानी, ज्ञान की कहानी। जी हाँ, रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल, हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि आज हमारा एक साल हो चुका है और बिल्कुल उड़ान की कहानी भी शुरुआत हुई थी। उड़ान की कहानी कार्यक्रम की 26 अगस्त को पहला कार्यक्रम हुआ था और आज हमारे साथ MBC की कुछ ऐसी सशक्त महिलाएँ जुड़ी हैं जो विविध भाषाओं में कार्यक्रम करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं। आज हमारे दूसरे पैनल में हमारे साथ जुड़ी हैं उर्दू अनाउंसर सैयदा नाजिया सुबाई और हमारे साथ जुड़ी है गुजराती अनाउंसर, हमारी सहयोगी अमिता सिबारता। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सैयदा और नमस्ते अमिता।
1: नमस्ते रत्ना।
0: और बिल्कुल आज हमारे साथ, हम आपको बताते चले, आज हमारे साथ जो उर्दू अनाउंसर हैं उनको शायद आपने सालों पहले देखा होगा खुशबुए गजल धनक कार्यक्रम में, जहाँ पर वे टीवी का चेहरा थी और आज रेडियो की आवाज़ बनी है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सैयदा और मैं बहुत खुश हूँ आप मेरी दोस्त हो और आज मैंने आपको इस मंच पर बुलाया है।
2: मैं भी उतनी ही खुश हूँ रत्ना कि आपने मुझे ये एहसास दिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने इस मंच पर, जिसको मैं हमेशा बहुत शौक़ से सुनती हूँ औरतों के हवाले से, औरतों की मतलब जो यहाँ पर एक हमारे लिए एक पावर की बात है कि आप यहाँ पर हर हफ्ते बुलाती हैं और बात करती हैं, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू नाजिया। और बिल्कुल, हम इन्हें नाजिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो नाजिया मैं ज़रूर आपसे पूछना

0: चाहूंगी, आप एक समय पर टीवी का चेहरा हुआ करती थी,
1: हाँ,
0: तो आप टीवी के बाद आज रेडियो में यहाँ पर जुड़ी हैं, हमें आप कि ये सफर के बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: 2004 में मैंने टीवी ज्वाइन किया था और मैं गज़ल के हवाले से टीवी पर मेरा इंटरव्यू हुआ था और मुझे वहाँ पे साइन किया गया था। मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स किए खुशबुए गज़ल के नाम से, जो कि काफ़ी अच्छे गए उस ज़माने में, जब बच्चे एक ही बच्ची थी उस ज़माने में, और उसके बाद फिर एक दो तीन बेटियाँ हुई, और फिर 2004 से 2011 तक मैंने टीवी किया। उसके बाद फिर मैं एजुकेटर बनी और मैंने स्कूलों में पढ़ाया, प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, काफ़ी तालीम के हवाले से। ये भी मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक एजुकेटर भी बनूं, तो मैंने ये काम किया। उसके बाद 2019 में मुझे दोबारा रेडियो पर ऑफ़र हुई, जिसे मैंने कबूल किया और मैं दोबारा से यहाँ पे रेडियो अनाउंसर बनी।
0: तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर आप टीवी पर काम करती थी और आज आप एक रेडियो अनाउंसर है, आपने क्या डिफरेंस महसूस किया?
1: डिफरेंस ये है कि जब हम टीवी पर शो करते हैं तो वहाँ पर हमें बस एक स्क्रिप्ट होता है जो हमें पढ़ना होता है और उसको प्ले करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पूरा जो आपका एक घंटे का या 20 मिनट का या दो घंटे का जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें पूरा आपका रद्द अमल होता है। मतलब पूरा का पूरा आपका काम होता है, आपको एडिट करना है, आपको टेक्निक करनी है, आपको स्क्रिप्ट बनाना है, आपको कॉन्सेप्ट आपका अपना होता है, पूरा पूरा काम आपका होता है। तो ये पूरा एक आपका स्लॉट होता है,
0: तो बिल्कुल उसे आप खुद डेकोरेट करते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो एक तरह का आपने देखा होगा कि ये वाला काम शायद, मुझे लगता है, ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा।
1: हाँ, ये ज़्यादा, और इससे ज़्यादा हम रेडियो पर हम ज़्यादा कनेक्ट होते हैं अपने ऑडियंस से डायरेक्टली।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारा जो एक घंटे का शो होता है उसमें हमारे कॉल्स भी होती हैं, मैसेजेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं अपने ऑडियंस से।
0: बिल्कुल, और जैसे नाज़िया हमारे उर्दू कार्यक्रम को संभालती हैं, उसी तरह से हमारे साथ अमिता सिबारत है मेरे साथ, वे भी गुजराती प्रोग्राम करती हैं और आज हमारे सहयोगी होने के नाते आज वे भी इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। नमस्ते अमिता।
2: नमस्ते रत्नाबेन। बस मजा चाहिए।
0: बिल्कुल, हम हमेशा ऐसे ही ग्रीट करते हैं एक दूसरे से। और बिल्कुल अमिता, आप कितने सालों से रेडियो के साथ जुड़ी हैं?
2: मैं रेडियो के साथ मैं 4 साल से जुड़ी हूँ। मैंने 2022 में ज्वाइंट किया था।
0: हाँ हाँ। और अमिता, आपने पहले रेडियो पर कभी काम किया
2: ना?
0: था?
2: मैंने कभी रेडियो पे काम नहीं किया था, मैंने पहली बार यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है।
0: और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: इट्स लिटिल बिट
0: डिफरेंट। हाँ जी, हाँ जी। और आपको अच्छा लगता है ये काम?
2: अच्छा लगता है, अपनी लैंग्वेज में बात करो अच्छा लगता है।
0: और बिल्कुल, एक तरह से हम अपनी भाषा के साथ
2: जुड़े रहते हैं।
0: अपनी भाषा के गीतों को सुनना, उसे समझना, उसे चलाना, एक तरह की एक अलग ही खुशी मिलती है। और नाज़िया, मैं पूछना चाहूँगी, इस एक साल में आपने जो भी, मतलब रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती, हमारा जो एक साल आज पूरा हुआ है, इस पर आप हमारे ऑडियंसेस को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत मोहब्बत से, बहुत मेहनत से, रोज़ तैयारी करके यहाँ आते हैं, सिर्फ आपकी इस वजह से कि हम यहाँ से मोहब्बतें, प्यार आपका समेट कर लेकर जाएं। तो जितने भी लोग हमें सुनते हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया कहूँगी सबसे पहले तो, और एक पैगाम दूंगी कि हमेशा ऐसे ही सुनते रहें।
0: बिल्कुल। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग हम लोग को रोज़ सुनते हैं रेडियो में, हम लोग के गुजराती प्रोग्राम लोग लिसनर्स है, वो लोग हम लोग हमेशा हम लोग के साथ में जुड़े रहे और हम लोग को सपोर्ट करें, बस।
0: बिल्कुल। और मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है नाज़िया?
1: यही है कि मतलब हमेशा हिम्मत, हौसला, और हमारी जो एक औरतें हैं, मतलब हमेशा हम लोग अपनी हिम्मत से ही हर काम कर जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बस हिम्मत और हौसला रखें।
0: और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: मैं वही देना चाहती हूँ, हमेशा वुमन को इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। इंडिपेंडेंस रहोगे तो आप जो भी काम करना है अपने से कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो कभी भी कुछ भी मुश्किल रहेगी तो आप आसानी से उसमें से निकल सकते हो।
0: बिल्कुल, यानी मुश्किलों तो डरना नहीं
2: चाहिए, उसको सामना करना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो ये थी हमारी दो ऐसी सशक्त महिलाएं जो दूसरी भाषा में, अन्य भाषा में, यानी हिंदी से अतिरिक्त भाषा में हमारे साथ रेडियो के साथ जुड़ी रहती हैं। और इसी के साथ हम जुड़ेंगे अभी थोड़ी ही देर में अपने तीसरे पैनल के साथ, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगी अनुराधा अचगास जी और सीताबाई दरमिया, जिनको आप हमेशा सुनते हैं। आइए, गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

की कहानी, उड़ान की कहानी। जी हाँ, उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर, क्योंकि आज है बहुत ही खास दिन, एक साल की वर्षगांठ। रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आज हमारे तीसरे पैनल में हमारे साथ जुड़ी है हमारी मराठी अनाउंसर सीताबाई दमिया, जिनको आप हमेशा सुनते हैं रेडियो मनोरंजन पर सुबह 9 बजे के कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं अनुराधा उचगास जी, जो हमेशा आज की चर्चा के कार्यक्रम करती हैं। और शायद आपको याद होगा, पहले के समय में वे भी हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में आप लोगों का मनोरंजन कर चुकी है। और अभी

0: फिलहाल वे एक प्रोग्रामिंग ऑफिसर है। तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्ते अनुराधा जी और नमस्ते सीता बाई।
1: नमस्ते रत्ना जी। और आपको देख करके बहुत ही कैसे बोल खुश हो रही हूँ।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मैं हमेशा ये जैसे कि प्रोग्राम वहाँ बैठी हूँ और किसी गेस्ट होता है, लेकिन आज
0: गेस्ट के

0: ही अपना पूरा सहयोग दिया। तो पहले तो मैं अनुराधा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एमबीसी के साथ कितने सालों से जुड़ी हुई हैं?
1: अगर देखा जाए तो कहेंगे कि 30 साल से ज्यादा,
0: यानी एक बहुत लंबा सफर,
1: बहुत लंबा सफर। सहेलियों जो अभी अभी कुछ समय पहले आपके साथ थी, उन लोगों से बहुत समय में यहाँ रहा,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बहुत नर्वस थी उन दिनों, और आजकल बहुत कुछ सीखने को मिला। जब इन 30 सालों में बहुत कुछ
0: आपने देखा, बहुत कुछ सीखा और अभी तक सीख रही हैं,
1: अभी तक इम्प्रूव करना चाहिए, करते रहना चाहिए, ये बहुत कुछ हम लोग
0: बिल्कुल। और जहाँ हमारे साथ अनुराधा जी जुड़ी है, वहीं पर हमारे साथ सीताबाई दमिया भी जुड़ी है, जो कि हमारी सीनियर अनाउंसर रह चुकी है, मराठी अनाउंसर है। सीताबाई, आप कितने सालों से एमबीसी के साथ जुड़ी है?
2: मैं 21 सालों से, इसके 21 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और मैं मराठी भाषा की प्रतिनिधि हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं अपनी मराठी भाषा की सेवा कर रही हूँ।
0: आपकी आवाज़ भी बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली, और बिल्कुल पहले तो सीताबाई हमसे कह रही थी कि पता नहीं हिंदी में बोल पाएंगे, मैंने कहा नहीं, बहुत आसान है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं आसान हो जाता है वार्ता करना, बातें करना। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी अनुराधा जी से कि अनुराधा जी, आप पहले रेडियो में काम करती थी, अब एक प्रोग्रामिंग ऑफिसर है, तो आपका जो अनुभव रहा है दोनों औरों का, आप हमसे ज़रूर साझा करें।
1: बिल्कुल, वैसे रेडियो अनाउंसर होना ये आसान काम नहीं है, आप भी जानती हैं, एक माइक के सामने, और अगर आप सोच रहे हैं उधर शीशे के उधर के उस पार या दूसरे लोग कैसे कैसे वो लोग हैं, तो अगर आप एक माइक के सामने हैं ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए आप बहुत ही अच्छी मीठी आवाज़ में बहुत ही प्यार के साथ उन लोगों से बर्ताव कम्युनिकेट करना चाहिए। रही बात जब शिफ्ट किया गया, मतलब मान लीजिए एक प्रमोशन के रूप में शिफ्ट किया गया है प्रोग्राम डिपार्टमेंट में, ये बिल्कुल अलग है। टीवी के लिए उनके जो सीरियल्स, उनके जो मूवीज़, उनके जो मतलब जितने जितने प्रोग्राम्स आते हैं उसको वेट करना और उसको मतलब क्वालिटीज़ देखना चाहिए, कंटेंट वाइज देखना चाहिए, ये बिल्कुल अलग है रेडियो,
0: बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और अभी आप दोषी के प्रोग्राम यानी आज की चर्चा जैसे प्रोग्राम अभी तक जारी रखा है, और आपको ये एक मौका मिला है यहाँ पर,
1: ये अवसर मिला मतलब कितने सालों के बाद, और ये क्रेडिट जाता है नर्मदा खेदना जी, मिसेज नर्मदा खेदना जी को, जो उसने मुझे मतलब ये सोचा कि मैं ये आज की चर्चा प्रोग्राम कर सकती हूँ, और एक प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर दिल से मिले दिल मुझसे प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, जब मेरे जितने श्रोता मुझे जानते हैं वो लोग बात करते हैं मुझसे, मैं उन लोगों के फीलिंग्स अभी तक ये हैं कि प्रोग्राम अच्छा था, या फिर
0: एक फीडबैक
1: मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। और रही बात जब आप बोल रही हैं कि आज की चर्चा अभी तक सीख रही है, इम्प्रूवमेंट जारी है,
0: बिल्कुल, तो मैं पूछना चाहूंगी अनुराधा जी, जब पहले आप फॉरेस्ट साइड में काम करती थी और आज यहाँ एमबीसी मोका में काम करती हैं रेडियो पर, आपने दोनों रेडियोज में आपने देखा है, तो पहले के जमाने के रेडियो और अब के जमाने के रेडियो में क्या अंतर है?
1: और जैसे ही ये अवसर मिला, मौका मिला, मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेनिंग मिली पहले, कुछ नाम है जो मैं जोड़ना चाहूँगी आप लोग के सामने, मिसेज चंदानी नबीन, रोमा भीरू, मिस्टर अब्दुल सलाम अहमदी, और कैसे शीला आलिम चंद को भी बोल सकती हूँ। ये लोग ना जैसे हम लोगों को एक प्रोग्राम हम लोग करते थे, वो लोग बोलते थे कि आकर के आपको एक शाबाशी देते थे, कि ये प्रोग्राम अच्छा था या नहीं अच्छा था, कहाँ आपको गलत किया, ये बोलते थे। फिर मिस्टर भूमिता शर्मा एरगा के ओपीओ थे उन दिनों, तो जैसे आप एक गलत चीज़ बोलते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक होते थे ना, तो वो आपको सबके सामने तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक मीटिंग बिठाएंगे और मीटिंग के दौरान बोलेंगे कि ये गलती हुई, ये गलती, लेकिन आप इस तरह आप ट्रेन कर सकते, इस तरह आप सीखते हैं, फिर दोबारा ये गलती आज तक नहीं करते हैं।
0: यानी एक तरह से वो टीम वर्क हुआ करता था,
1: टीम वर्क तो है, टीम वर्क
0: बिल्कुल, और वही जो चीज़ है वही हमें पॉलिश करती है, और कहीं ना कहीं हमें ग्रो करने के लिए, हमें हम जहाँ आज हैं। और मैं ज़रूर हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी नाम अनुराधा जी ने लिए, ये हमारे मेंटर्स रह चुके हैं, और मेरे लिए मेंटोर रह चुकी है अनुराधा जी, जिनको देखकर मैं हिंदी भाषा यानी हिंदी प्रोग्राम्स करना सीखी हूँ। और बिल्कुल आज हमारे साथ सीताबाई दरमिया भी हैं, वे भी हमारी सीनियर अनाउंसर हैं और मराठी भाषा को वे रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं सीताबाई आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी यही सवाल कि पहले के रेडियो में और अब के रेडियो में क्या अंतर है?
2: पहले हमें टेक्नीशियन

0: का सहयोग मिलता था, पर अब हम खुद टेक्निक का काम करते हैं और नए गीत, नए प्रोग्राम, नई सोच के साथ प्रोग्राम करते हैं।
1: सीता भाई, क्या ये आसान है?
0: बिल्कुल आसान नहीं है।
1: और आप एक महिला हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते आपके लिए कौन सा चैलेंजिंग फेज रहा है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने रत्ना जी। एक महिला के लिए आसान बात नहीं है। महिलाएं बहुत सैक्रिफाइसेस करती है, पर उदाहरण के तौर पे घर संभालना, 6 बजे उठना, ट्रैफिक जाम में फंसना और टाइम पर काम में पहुंचना,
1: ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
0: बड़ा चैलेंज है,
1: बिल्कुल।
0: और ये बात स्पष्ट है कि हम अपने काम से कितना लगाव है, कितना प्रेम है, संगीत से कितने जुड़े हुए हैं, कितना प्रेम है। रोज़ के तान तनाव जीवन में दूसरों का भी तनाव दूर करना, हमें लोगों के चेहरे की हंसने बनाए रखने का एक ऐसा शुभ और सुनहरा अवसर मिला है।
1: बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इस तनाव भरे जीवन में, भले कहते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन, इसीलिए चाहे आप कितनी भी तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आपका एक कर्तव्य बन जाता है जब आप एक वो स्टूडियो में हैं, माइक के पीछे आपको उस आवाज़ को प्रोजेक्ट करना है जहाँ पर आपकी दर्द बिल्कुल सुनाई नहीं देनी चाहिए, आपके अंदर क्या चल रहा है उसे बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करना है, और आपको अपने श्रोताओं के चेहरे पर की एक मुस्कुराहट बनाए रखना है। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप अपने श्रोताओं को, हमारे जो लिसनर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: बस उन लोगों के सहयोग, प्यार और सहानुभूति से ये सारे प्रोग्राम जितने हमारे जेस हैं, जितने हमारे जो उन लोगों के सहयोग से होता है, तो सुनते रहिए।
1: हाँ,
2: हमारे रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती, जो भी आप सुनते रहिए MBC के साथ, क्योंकि बहुत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम भी होते हैं, बहुत म्यूजिकल प्रोग्राम, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और हम एक बात जोड़ना चाहूँगी, हमारे जो टेक्नीशियन ने बहुत सहयोग दिया हम लोगों को, बहुत ट्रेनिंग भी मिली,
1: बैकबोन है वो, हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि मैं हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ कि हम, हो सकता है कि माइक के इस तरफ आप हमें सुन रहे हैं, पर हमारे साथ बिहाइंड द सीन कितने लोगों का सहयोग, जैसे इस तरफ हम कहना चाहेंगे कि हमारे तकनीक पर इस वक्त अपर्णा का साथ है और सतिन भरत जी हमारे साथ है, हमारे प्रोड्यूसर दीपशिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे कई सारे ऐसे अनाउंसर्स हैं जो तरह तरह के इशारे करके हमें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, पर बिल्कुल उनका सहयोग, उनका साथ सहयोग इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में हमें बहुत सहयोग मिलता है। और सीता भाई, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: हमारी सभी मराठी अनाउंसर्स की ओर से प्रोड्यूसर अर्जुन पुतला जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, और हमारी रेडियो डिपार्टमेंट की हेड नर्मदा खेदना को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम हमेशा यही कोशिश लगे रहेंगे कि हमारा रेडियो आप लोगों के प्यार और सहयोग से आगे प्रगति करें।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता जहाँ पर हमारे साथ हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्रीमती नर्मदा खेदना ने हमें ये सुनहरा अवसर दिया कि ऐसे कार्यक्रमों को लेकर हम आपका मनोरंजन करें। तो बिल्कुल आज हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं, एक और पैनल है, तो आते हैं अभी थोड़ी ही देर में अगले पैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: लेते हैं गीत का ब्रेक।

0: की कहानी, उड़ान की कहानी।
1: जी हाँ, रेडियो मनोरंजन के लहरों पर इस वक्त उड़ान की कहानी कार्यक्रम में मैं रत्ना आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और बिल्कुल आज हम मना रहे हैं पहली वर्षगांठ रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की। और आज हमारे लास्ट और आखिरी पैनल में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं परी और नीतू शाह, जिनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहती है रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: और आज सारी महिलाएँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं।
2: हमने साड़ी पहनी है।
1: ज्यादातर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, पर आज आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं।
2: ये मैं सबसे बोल रही थी, हमेशा उधर बैठते थे।
1: हाँ,
2: आज उधर बैठे, कुछ अलग सा लग रहा है।
1: वही मैं पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। इस वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन का पहला वर्षगांठ। और ये तो पहला वर्षगांठ है, हम लोग एक साल के हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है रेडियो का, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं हमारे, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं लेकिन लोग हमें देख भी रहे हैं, तो रेडियो टीवी आजकल एक साथ चलते हैं, तो ये जो रिश्ता है बहुत लंबा है, बहुत लंबा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और परी, आप कितने सालों से एमबीसी के साथ जुड़ी हुई हैं?
4: जब ज्वाइन किया था इट वाज इन 2013, तो 2013 से अब 2026, इतने सारे बदलाव देखे, इतने सारे नए लोग जुड़ते गए और प्रोग्राम्स में चेंजेस देखे, और जिस तरह हम हमारे शोज करते हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव आए, लेकिन इसमें हमेशा जो लोगों का साथ रहा, दैट हैज़ ऑलवेज बीन स्पेशल।
1: और बिल्कुल, आपको ये भी बताते चले, परी भी गुजराती है और हम हमेशा जब बात करते हैं, जैसे अमिता के साथ हमने कहा केम छो, हम यही कहकर शुरुआत करते हैं अपने बातों की। और बिल्कुल जैसे परी ने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस, तो नीतूषा आपने, आपका तो रिश्ता, आपका कितने सालों का रिश्ता है?
2: अभी तो जैसे बेस्ट एफएम से शुरुआत हुई थी, यानी कि 2010 में, लेकिन रेडियो आरजे की से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, यानी कि कह सकती है मेरा बचपन, मेरी जवानी एमबीसी में ही गुजरी और अभी तक जो
1: टिके हुए हैं
2: चल रहे हैं।
1: जी,
2: और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, हमारे जितने भी श्रोता हैं, उनके बदौलत, हमेशा कहती हूँ अगर वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: और हमने अभी तक इतना कुछ सीखा है, और ये जो ऑडियो विजुअल का ये जो संसार है, ये जो दुनिया,
1: नया दौर
2: है।

0: लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जो नए आते हैं उनसे सीखते हैं, जो हमें पता है उनको सिखाते हैं, एंड हमारे जितने भी सीनियर्स रहे हैं आई एम श्योर सब ने किसी का नाम तो लिया ही होगा, तो सबका हम आभार व्यक्त करते हैं और जितना भी सीखा उनसे हम थैंक यू दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और ये जो रास्ता अभी हम काम कर रहे हैं इट्स बीन सो लॉन्ग, लेकिन बहुत कुछ और सीखना है।
1: बिल्कुल, और जैसे आपका सफ़र रहा है आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे नीतू, तो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ, यानी जो भी चेंजेस आए, जितने भी आपने चेंजेस खुद अपने आंखों से देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो इसमें से कुछ आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो?
0: है तो बहुत सारे, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं समझती हूँ कि हर रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, शायद आप भी मानेंगी। ऐसी कोई ख़ास बात तो बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग मानते हैं कि जो रेडियो फैमिली है एक परिवार है और ऐसे ही हम लोग जीते हैं, सुख में दुख में किसी परेशानी में हर किसी के साथ मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं प्यार से मोहब्बत। कोई कोई कहता है कि एट वर्क प्लेस कोई दोस्त नहीं होता, हम नहीं मानते हैं, ये जो टीम वर्क है जैसे कि आपने कहा एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है दिमाग में, हम चले जाएंगे तब आएंगे,
1: तब शायद आएगा याद। हाँ।
0: लेकिन ये जो हमारे ऑडियंस के साथ जो हम रिश्ता बनाए रखे हुए हैं, जो कायम रखे हुए हैं, वो बहुत ही स्पेशल है।
1: नीतूषा, मैं समझती हूँ इस बात से आप सहमत रहेंगी कि हम घर से ज्यादा घंटे काम पर बिताते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा आधे दिन से ज्यादा समय यहाँ बीत जाता है। तो कई बार होता है कि कभी हमारी तबीयत कुछ नासाज हो जाती है, कभी शरीर साथ नहीं देता, कई बार थकावट सी हो जाती है। कई सारे लोग हमारे साथ जिस तरह से, मतलब एक तरह फैमिली का जो सपोर्ट होता है वही सपोर्ट हमें काम पर हमारे सहयोगियों से हमें
0: बराबर जैसे कि आपने कहा, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं। अब देखो कभी कभी मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, शो शुरू होता है 5 बजे, 3 बजे उठना फिर यहाँ पर आना, इट्स नॉट ईजी। लोग सोचते हैं कि भाई ये सब कैसे करते हैं। जब हम लोग छोटे थे निर्मला को जैसे जितने भी हमारे रेडियो अनाउंसर्स रहे उनको सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था ये तो बहुत आसान काम है बात करना रेडियो में, लेकिन जब आप असल में इस जिंदगी इस दुनिया में कदम बढ़ाते हैं तब पता चलता है भाई इसके पीछे कितना सारा काम होता है।
1: ये जगह को हॉट सीट यूं ही नहीं कहा जाता क्योंकि हमारे जितने भी अनाउंसर जितने भी जो लिसनर्स हैं जब वे लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, जब वे देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम होता है, तब जाकर हमसे कहते हैं अगे बेटी नहीं फासिल नहीं हो है काम करे के। जितना उन लोग देखते हैं हमारा स्टूडियो का सेटअप जिस तरह का है, और नीतूषा आप जब काम करती हैं, जब आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि टेक्नीशियन नहीं है, कई बार हमारा कोई सपोर्ट नहीं है या कुछ नहीं है, तो किस तरह से उस टाइम पर बीइंग अ ड्यूटी अनाउंसर किस तरह से रैपिडली आपको ड्रास्टिकली एक डिसीजन लेना है। और आपने तो काम किया है साइक्लोन के टाइम में, जहां पर साइक्लोन के टाइम पर कोरोना के टाइम पर जहां 6-6, 8-8, 12-12 घंटे लगातार नॉनस्टॉप आपने काम किया है, उस टाइम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
0: ये जैसे कि आप कह रहे हैं कोविड के टाइम पे या फिर साइक्लोन के टाइम पे, कुछ लोग समझते हैं कि हाँ भाई साइक्लोन है घर के अंदर रहे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि आप सुरक्षित रहे रेडियो के माध्यम से। हम लोग एंटरटेन तो करते हैं लेकिन इन्फॉर्म भी करते हैं, जैसे कहते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट बस गाने चलाओ थोड़ी सी बकबक करो, नहीं, क्योंकि रेडियो जो है इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मिंग, यानी कि एंटरटेनमेंट भी है और साथ ही साथ इन्फॉर्म करते रहना। तो बड़ा मज़ा आता है जब शायद सब कोई तो नहीं होता है जैसे नॉर्मल वर्क डेज में होता है, हम लोग आते हैं चाय पीते हैं खाना खाते हैं, लेकिन ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हमारे कंधे पर ये बहुत बड़ी बात होती
1: है। बड़ी बात होती है। और परी आपने तो कई बार जैसे स्टूडियो के अंदर रहकर भी काम किया है, साथ ही साथ आपने लाइव में भी काम किया है, बाहर आउटडोर्स में भी आपने कई सारे शोज किए हैं। कई सारी बार ऐसा होता है कि हमें लाइव पब्लिक का सामना करना पड़ता है, तो आपके चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं?
2: चैलेंजेस से ज़्यादा एक एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पर नॉर्मली जब हम रेडियो पर बात करते हैं इंटरेक्शन तो होती नहीं है, मैसेजेस आते हैं बट वी डोंट नो कि ये कौन लोग हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, इतने मैसेजेस हम तक पहुँचाते हैं। तो जब हम लाइव करने जाते हैं ओबीज़ के लिए बाहर जाते हैं, तब मौका मिलता है कि वी इंटरेक्ट हमारे ऑडियंस के साथ, और तब हमें पता चलता है कितनी बार वो शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में शायद कोई है ही नहीं, द रेडियो इज़ देयर ओनली कंपेनियन। सुबह 5 बजे से वो रेडियो शुरू करते हैं और जो भी आरजेज हैं उनके साथ एक ऐसा उनका कनेक्शन बनता है कि कभी कभार वी हैव इवन सीन के जो लोग हमें मिलने आते हैं वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, वो रोते हैं और वो ये भी कहते हैं कि बस आप ही हमारा परिवार है और अगर आपके रेडियो शोज हम ना सुने, अगर गाने ना सुने तो हमारी लाइफ बहुत अधूरी है। तो ये एक जो मौका मिलता लगता है हमारे लिसनर्स के साथ इंटरेक्ट करना, दिस मेक्स यू फील वेरी स्पेशल.
1: और कई बार ऐसा लगता है कि ये जो हमें काम मिला है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग फ्रंट लाइनर्स हैं, जो पुलिस का काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम

0: करते हैं, कहीं ना कहीं रेडियो का जो काम है, ये जैसे कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं वो आपकी तकलीफ़ को दूर करते हैं, पर यहाँ हम खुशियाँ बांटते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जहाँ पर हम लोगों के दुख को भुलाकर, गम को भुलाकर, कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह सवेरे जब निकलते हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो पहली चीज़ जो आप करते हैं गाड़ी में बैठ कर रेडियो टर्न ऑन करना, और रेडियो पर अगर एक लाजवाब सी आवाज़, साथ ही साथ बढ़िया से बढ़िया गानों का सिलेक्शन अगर आपको सुनने में मिले तो आपको लगता है कि भाई आज मेरा दिन बढ़िया हो गया। और मैं नीतूषा, आप एक लेडी हैं, महिला हैं, और जो भी चैलेंजेस आप फेस करती हैं उसके माध्यम से आप अपने लाइफ में, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन सारी महिलाओं को जो आए दिन बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: सबसे पहले हम यहाँ पर आरजे हैं, रेडियो जॉकी है,
0: हाँ,
1: एक माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है। तो जैसे कि आप कह रही है, चैलेंजेस तो हर कदम पे आते हैं। जब से आप पैदा होते हो, परी शायद आप ही मानोगे कि चैलेंजेस तो होते रहते हैं। कोई लोग बोलेंगे, अरे यार ये आरजे का काम करती है, रेडियो में काम करती है, तुम अपना घर संभाल नहीं सकते हो। कभी कभी बच्चे भी शायद परेशान हो जाते हैं,
0: बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते,
1: इतने सारे घंटे काम में रहते हो, घर पर नहीं रहते हो। तो ये सब जो है, हम लोग इनसे बड़े बड़े यानी कि होते हैं, वी ग्रो अप इन सब चैलेंजेस के साथ। तो मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं एक आरजे भी हूँ, एक कलाकार भी हूँ, और गानों के जरिए, क्योंकि मेरी शुरुआत एज एन आर्टिस्ट, मैंने कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए, तब धीरे धीरे प्रोग्राम्स किए, यहाँ पर शादी भी एमबीसी वाले से हुई और फिर जब प्रोग्राम करते हैं तो उन गानों के ज़रिए जो पैशन है वो हमारा काम बन गया। तो म्यूज़िक जो है हमको जो चैलेंजेस होते हैं जैसे कि आपने कहा, उनको ओवरकम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो जितने भी अभी लेडीज़ हमको देख रही हैं, अगर आप भी पैशनेट हैं अबाउट म्यूज़िक, क्योंकि हम कहते हैं रेडियोज जो होते हैं, गाने जो होते हैं, म्यूज़िक, अंग्रेज़ी में शेक्सपियर ने कहा ना, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी जो है। तो आप फूड फॉर लाइफ, इसको आप प्ले करते रहो।
0: मैं यहाँ पर नीतूषा, मैं ज़रूर, आज मुझे मौका मिला है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहूँगी। मैं जब यहाँ पर शादी करके आई थी तब मैंने आपको देखा था सारे गामा पा के मंच पर, आप दुबई में परफॉर्म कर रही थी और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने पूरे मॉरिशस का दिल लुभाया था, और कहीं ना कहीं हमें गर्व महसूस हुआ था कि आप वहाँ तक जा पहुँची थी। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं नीतूषा के सामने बैठकर उनका इंटरव्यू लूँगी और ये बात मैं कभी बोल पाऊँगी। तो आई मस्ट से थैंक यू सो मच, और बिल्कुल आपको बस यूं ही ऊपर वाला, एक बहुत ही सुंदर आवाज़ आपको मिली है। और परी, आज हमारा भी यहाँ पर सामना हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि परी के साथ भी मैं कोई ऐसा इंटरव्यू वाला सेशन लूँगी जहाँ पर हम उड़ान की कहानी कार्यक्रम को, और बिल्कुल उड़ान की कहानी मैं ज़रूर बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आज हमारा एक साल हो चुका है और पहला जो कार्यक्रम था वो भी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना महिलाओं के साथ इंटरव्यू करना, लेकिन आज ये कार्यक्रम उड़ान की कहानी बहुत ही बड़ी उड़ान भर चुका है और ये उड़ान भरते जा रहा है जहाँ पर हमारी कितनी सारी महिलाएं इस कार्यक्रम को देखती हैं। तो परी, हमारी जितनी भी लेडीज़ जो प्रोग्राम देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, चाहे वो रेडियो अनाउंसर हो या किसी भी कार्य में हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है?
2: वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो यही कहूँगी कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो इतनी अच्छी दोस्त नहीं हो पाती है। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि हर जगह जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर लोग आपके आगे बढ़ने से शायद इतने खुश नहीं होते, लेकिन जहाँ पर हमने काम सीखा है, जैसे आप हमारी सीनियर रही है, नीतू मेरी सीनियर रही है, और उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। सो जैसे पहले दिन से हमने देखा कि जितना प्यार, जितना सपोर्ट मिला कि हम उनके साथ काम करने आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हम आपको ये ना सिखाएं या वो ना सिखाएं, हर बेसिक, हर डिटेल हमने सीखी। और शायद लाइफ जो है वो छोटी सी है, लेकिन यही है कि एक दूसरे की मदद करते चले, और लाइफ में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ पर आप कभी किसी की मदद कर पाएंगे। सो ऑलवेज हेल्प समवन, और म्यूज़िक के ज़रिए जो थेरेपी है वो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, और दिल से हम बस यही चाहेंगे कि म्यूज़िक के ज़रिए आप जो स्माइल है वो आपकी स्माइल ऐसे ही बनी रहे, आप खुश रहें। लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, बस तहे दिल से आपको, दिल से हम थैंक यू कहेंगे। एंड बिग थैंक यू टू नीतू, बिग थैंक यू टू रत्ना, एंड ऑफकोर्स हमारी जो बॉस है नर्मदा जी, एंड ऑल द लेडीज़ जो इतनी सपोर्टिव है, एक भी अगर हमें मदद की ज़रूरत होती है, जस्ट अ फ़ोन कॉल, जस्ट अ मैसेज, हमेशा उनका साथ, उनका प्यार रहता है। सो आई गेस दैट्स लाइफ, कीप हेल्पिंग। sharing and

0: Keep spreading love.
1: बिल्कुल. और नीतूषा, आप एक बीइंग अ लेडी, आप क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट पर? और बिल्कुल क्लोजिंग सेगमेंट होगा कि आप हमारे ऑडियंसेस को इस एक साल के बर्थडे पर क्या विशेस देना चाहेंगी?
0: प्रोग्राम है उड़ान की कहानी, तो मैं जितनी भी महिलाएं हैं आपसे कहना चाहूंगी, बस आप ही अपने सपनों की उड़ान को भरने दीजिए. बस रोकिएगा मत, ये ना सोचे कि आप एक महिला हैं कुछ नहीं कर सकती. कहते हैं नारी शक्ति होती है, तो उसमें कितनी शक्ति होती है ये सब जानते हैं. तो बस आप अपने आप को समझे और कभी भी अपने आप को इन्फीरियर, कभी भी कम मत समझिएगा और हमेशा आगे बढ़ते चले. जैसे परी ने कहा, सब है यहाँ पर, हमारी बॉस भी एक लेडी है और जितने भी हमारे टेक्नीशियंस यहाँ पर, ये भी सराहनीय बात है कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं आजू बाजू हमारे जितने भी लोग काम करते हैं उनका भी सपोर्ट मिलता है. तो आगे बढ़ते चलो और रुकने का नाम बिल्कुल नहीं है.
1: बिल्कुल, मैं ज़रूर, जब आप टेक्नीशियंस की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ हमेशा सपोर्ट, फुल सपोर्ट में होती है अंजू लक्ष्मण, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करने में या कुछ भी ऐसी होती है समस्या तो वे हमारा साथ देती हैं. जैसे अपर्णा भी एक महिला है और इस वक्त टेक्निक पर हमारे साथ बनी हुई है, दीपशिका प्रोडक्शन असिस्टेंट होने के नाते हमारे साथ बनी हुई है, उरुसा बानो जो आज नहीं आई पर हमेशा वे भी हमारा साथ देती हैं. आईटी डिपार्टमेंट, रेडियो आईटी डिपार्टमेंट की हम बात करें तो पद्मिनी और हेमलता हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं. एडमिन की बात करें तो निष्ठा और नेहा हमेशा हमारे साथ फुल टू सपोर्ट में रहते हैं. वैसे तो ये कुछ गिने चुने नाम हैं, देखा जाए तो हमारी टीम बहुत ज़्यादा बड़ी है, इससे भी ज़्यादा बड़ी. अगर मैं कहीं नाम लेना शुरू करूँगी तो मुझे लगता है एक घंटा बस नहीं होगा. तो जितने भी लोग हमारे साथ हमेशा सपोर्ट में बने रहते हैं और खासकर नर्मदा जी जो हमेशा हमारे साथ फुल टू सपोर्ट में रहती है और कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो तुरंत कौन सा सोल्यूशन निकालना है उसके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं. और हमारे जितने भी सोच है, हमारी जो भी थॉटफुलनेस होती है उनको वो बहुत प्राथमिकता देती हैं. तो बिल्कुल आज हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ी छह महिलाएं, छह नहीं आठ महिलाएं, जहां हम छह का सोच रहे थे आज आठ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे. हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर सचिन भरत जी जुड़े रहे, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे. जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर आपको एक वर्ष की इस सालगिरह के लिए रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंजन की सभी टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ. हम आगे बढ़ते चलेंगे और यूं ही उड़ान भरते रहेंगे. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ. तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. रत्ना को दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। फिनिक्स स्थित तालिमिया कॉलेज में आज राष्ट्रीय स्तर पर ईद मिलादुन्नबी मनाई गई। ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस को चिन्हित करने का एक उत्सव था। मौलाना मोहम्मद अनास सिद्दीकी ने विशेष रूप से पैगंबर की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। मॉरिशस में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशान मोहिपत को इंटरमीडिएट कोर्ट ने 29 अप्रैल 2022 के घटना में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अवांछित दुर्व्यवहार का दोषी पाते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 29 वर्षीय पीड़िता की शिकायत और व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह फैसला मजिस्ट्रेट जे डगान चाय किंग ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने जेल की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने गैर कारावास की सजा का अनुरोध किया था। डॉक्टर के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। सेशल्स की राष्ट्रसभा की स्पीकर अजाहल अनेस्ता को इस मंगलवार को उनकी मॉरिशस की समकक्ष शिरीन जिफ्रा द्वारा स्वागत किया गया। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य दोनों संस्थानों को अपनी कार्यप्रणाली की तुलना करने और संसदीय तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करना है। और विदेश में ट्यूनीशिया में स्वयंसेवकों ने देश के दक्षिण पूर्वी तट के पास 15 प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के डूबने के बाद अभी भी लापता 2 लोगों की तलाश जारी रखी है, जबकि बेनगदान शहर इस त्रासदी से भड़की हिंसक झड़पों और प्रदर्शनों से जूझ रहा है। तो इन्हें खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
7: RM3 Radio Manoranjan set hi pahilya vaat diu sachi hardik shubhechha.
8: Pahila varas ni vars gaanth ni tamne baddha ne RM2 ane RM3 taraf thi ghani ghani shubhkamnao.
9: Radio Manoranjan aur Radio Masti ke pehal ka saalgira ke dher bana shubhkamna.
10: Radio Masti mari Radio Manoranjan ku tuli वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु
11: इनिय मुदल आंड निरेव नलवाटिकल आरएम फ्री आरएम टू
12: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
13: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।
14: साल भर में सबसे प्यारा होता है।
0: मंगलवार 25 अगस्त रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। चले म्यूजिकल प्रोग्राम को लेकर अभी से लेकर 4 बजे तक हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। और आज का दिन तो बहुत खास है ही, जी हाँ, क्योंकि हमारे रेडियो की पहली एनिवर्सरी है और इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्रामों को पसंद कर रहे हैं, हमारे गानों को पसंद कर रहे हैं और ये एक घंटे का म्यूजिकल सफ़र जो है ये भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो देर किस बात की है, चलिए अवतार फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, यकीनन साल दर साल गुजरते जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जो है ये ऐसे ही होते रहेगी रेडियो मनोरंजन पर।

यकीनन तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। बड़ा ही खूबसूरत सा ये गाना अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं इस फिल्म से लिया गया। अब बारी है इस अगले तराने की। अगला जो गाना है गैम्बलर फिल्म का गीत है, लता जी और किशोर दा की आवाज़ों में, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। यकीनन हमारा भी दिल खुश हो जाता है जब आप इतने प्यार से हमारा साथ देते हैं, इन गानों को गुनगुनाते हैं। और चलिए गुनगुनाते गुनगुनाते इस म्यूज़िकल सफ़र को आगे ले जाते हैं।

0: जी हाँ, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना। ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और उषा खन्ना जी की आवाज़ों में, जिसे हमने लिया था फिल्म बिन फेरे हम तेरे। और अगला जो गाना है वो भी बड़ा लाजवाब है, आशा जी और अनवर जी की आवाज़ों में होगा। सोनी महिवाल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक, और यकीनन ये गाना हमें यकीन है बहुत से लोगों को पसंद है। और चलिए पसंद की बात कर रहे तो रेडियो मनोरंजन के इस सफ़र को आप पसंद कर रहे हैं, और आज का दिन तो बहुत खास है ही। जी हाँ, आज हमारे रेडियो की पहली एनिवर्सरी है, तो इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता, आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।

चलिए आप लोगों का साथ हमें मिलता है दोस्तों, तो कब ये सफ़र शुरू होता है पता ही नहीं चलता। और आप लोगों के साथ इन गानों का मज़ा उठाते उठाते अब बारी आ गई है इस अगले तराने की। अगला जो गाना है किशन कन्हैया, इस फिल्म से लिया है, साधना सरगम अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में। इस फिल्म में अनिल कपूर जी नज़र आए थे और अनिल कपूर जी का डबल रोल था और इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो चलिए इसी फिल्म का ये गाना हो जाए आप सभी लवली लिसनर्स के नाम।

0: दोस्तों देखते ही देखते एक घंटे का ये जो म्यूजिकल सफर रहा ये खत्म होने को चला। जाते जाते ये खूबसूरत गाना आप सभी के नाम हम करते हैं। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। नमस्कार, सुमी को दीजिए इजाजत।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: के बिशप मोनसीनियर जॉन-मिकाएल जुरन का प्रवचन एक सामाजिक चुनौती रोजगार में भेदभाव पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि समाज में अधिक सामाजिक न्याय लाने के लिए सैनवी के मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मोनसीनियर जॉन-मिकाएल जुरन ने श्रमिक जगत के लिए एक धर्म प्रांत आयोग की स्थापना की भी घोषणा की। फिनिक्स स्थित अलेमिया कॉलेज में आज राष्ट्रीय स्तर पर ईद मिलादुन्नबी मनाई गई। ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस को चिन्हित करने का एक उत्सव था। मौलाना मोहम्मद अनास सिद्दीकी ने विशेष रूप से पैगंबर की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। सेशेल्स की राज्यसभा की स्पीकर अज़ाहेल अनिस्ता को इस मंगलवार को उनकी मॉरिशस की समकक्ष शिरीन ओमिरोदी ज़िफ़्रा द्वारा स्वागत किया गया। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य दोनों संस्थानों को अपनी कार्यप्रणाली की तुलना करने और संसदीय तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करना है। और विदेश में भारत 12 और 13 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी होगा। ये 7 वर्षों में उनकी पहली यात्रा होगी और दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच संबंधों में सुधार का एक नया संकेत भी होगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: Aapke sitare.
3: तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम आपके सितारे में आपका हम स्वागत करते हैं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है। RM2 रेडियो मस्ती और RM3 रेडियो मनोरंजन आज मना रहा है अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी जहां पर इन्होंने एक साल कंप्लीट किया है आपके साथ। आपने प्यार पहुँचाया हमारे रेडियोज़ तक और यहाँ पर हमारा प्यार भी आप तक पहुँचा। सो थैंक यू फॉर द लव और थैंक यू। एक साल बस अभी तो शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि इस प्यार को आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। इट्स अ फर्स्ट एनिवर्सरी RM3 रेडियो मनोरंजन जहां पर अभी इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं हूं परी आपके साथ 4 से लेकर 6 बजे तक मंडेज एंड ट्यूजडेज लेकर आते हैं प्रोग्राम आपके सितारे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर एक सवाल पूछेंगे आपसे और अगर आप देते हैं हमें सही जवाब, आप जीत सकते हैं ₹500 का गिफ्ट वाउचर, ₹500 का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय एस्थेटिका। और इसे जीतने के लिए सिंपल सा सवाल है। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आप एंजॉय करते हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, लेकिन एक खास प्रोग्राम होता है जो शाम 7 से लेकर रात के 9 बजे तक आप एंजॉय करते हैं, जहां पर आपके लिए चलते हैं कुछ रोमांटिक गाने। आपको हमें उस प्रोग्राम का नाम बताना है। बात हो रही है RM3 रेडियो मनोरंजन, हर शाम 7 से लेकर 9 बजे तक एक प्रोग्राम चलता है जहां पर होते हैं बहुत ही सूदिंग रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए। सही जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5250-6200-5250-6200 पर। आप हमें बताइए मैसेजेस के जरिए कि वो कौन सा शो है, आपके सही जवाब हम तक पहुंचाएं आपके पूरे नाम और पते के साथ। वैसे हमने बता दिया कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी। रेडियो का एक साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन वैसे शुरुआत है। आपके प्यार का इंतजार रहेगा दोस्तों और उम्मीद करते हैं कि हमारे इन शोज को, इन प्रोग्राम्स को आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। अभी के लिए अगर आप जीतना चाहते हैं ₹500 का गिफ्ट वाउचर एस्थेटिका की ओर से, तो सिंपल सा सवाल है, 7 से लेकर 9 बजे तक जो प्रोग्राम चलता है ऑन रेडियो मनोरंजन उसका नाम क्या है। सही जवाब पूरे नाम और पते के साथ 5250-6200-5250-6200 पर।
4: साल भर में सबसे प्यारा
5: और इन फ्री रेडियो मनोरंजन साथी पहला वाटी दिवस साथी हार्दिक शुभेच्छा।
6: पहला वर्ष ने वर्ष गांठनी तमने बधा ने RM2 अने RM3 तरफ से घणी घणी शुभकामनाओ।
7: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
8: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदन लु।
9: इनिय मुदल आंडु
10: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
11: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।

0: 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together. Let's dance together. Let's celebrate together. Cake cutting, giveaways, distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market din ke 10 baje se 11 baje tak. Port Louis Urban Terminal Mall din ke 12 baje se 1 baje tak. Roswell Mall by West din ke 2 baje se 3 baje tak. Flak Taxi Stand next to bus station sham ke 4 baje se 5 baje tak. सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ. सेव द डेट, सेव द डेट. बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें. साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैग. तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26th of August को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी. Sponsored by Lutavere. Lutavere.
1: आपके सितारे.
2: और जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रोग्राम आपके सितारे. जैसे हमने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है, एंड बिग थैंक यू आप सभी को, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमेशा अपना प्यार हम तक पहुंचाते हैं. तो यहाँ पर हमारे साथ नर्मदा जी भी है. हेलो, गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते परी. सभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, सभी को नमस्ते कहना चाहूँगी. और जैसे कि परी ने बताया कि आज हम मना रहे हैं फर्स्ट एनिवर्सरी रेडियो मनोरंजन RM3 और साथ ही साथ RM2 रेडियो मस्ती का. तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लिसनर्स हैं, हम हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें. आपका प्यार, आपका दुलार इसी प्रकार हमारे सभी आवाज़ को मिलते रहे. और अगर आप प्यार देंगे उस तरफ से, तो इस तरफ से वे भी अपना प्यार, अपना दुलार, अपना मोहब्बत आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे आपके मनपसंद गीतों के जरिए. तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा की तरह.
2: थैंक यू सो मच नर्मदा जी. और बिल्कुल, हमारे जो लिसनर्स हैं, बीट मैसेजेस या फिर फोन कॉल्स, हमेशा आप हमारा साथ देते हैं. अभी के लिए हमने पूछा है आपसे एक सवाल, क्योंकि आज एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खास मौके पर हम चाहते हैं कि ये जो प्यार है वो आप तक भी पहुंचे. तो सिंपल सा सवाल है कि बहुत सारे शोज आप एंजॉय करते हैं रेडियो मनोरंजन पर, लेकिन एक खास शो होता है जो शाम के 7 से लेकर 9 बजे तक चलता है, जिसमें आप रोमांटिक गाने सुन पाते हैं और एंजॉय कर पाते हैं. तो आपको हमें बताना है उस प्रोग्राम का नाम, और आपके सही जवाब आप हमें मैसेजेस करके पहुंचा सकते हैं.

0: सकते हैं 5250-6200-5250-6200 या फिर आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं 402-8070 पर यानी कि 402-8070 इसी नंबर पर आप हमें फोन करके बता सकते हैं वो कौन सा प्रोग्राम है जिसे आप सुनते हैं हर शाम 7 से लेकर 9 बजे तक RM3 रेडियो मनोरंजन पर तो चलिए रहेगा आपके सही जवाबों का इंतजार हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर सीधा कॉल कर सकते हैं नंबर्स हमने आप तक पहुंचा दिए हैं आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी और आपका प्यार आपका साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा एंड थैंक यू इतने जो आपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस हम तक पहुंचाए हैं इतना प्यार जो हमने आपने हम तक पहुंचाया है तो चलिए अभी के लिए यहां पर हमारे साथ कोई जुड़ रहा है और जानते हैं ये कौन है हेलो हेलो जी हाँ कौन बात कर रहे हैं आप एक मिनट हम आपका आपका फोन लेंगे हाँ जी बताइए कौन बात कर रहे हैं आप
1: मैं हूँ देवानंद
0: देवानंद जी तो आपके मैसेजेस तो हमेशा हम तक पहुँच हाँ जी आज हम यहाँ पर ही हैं रेडियो पर है और प्यारे गाने आप तक पहुँचा रहे हैं
1: बहुत खुश
0: तो देवानंद जी आप हमें सही जवाब देंगे
1: दिलों की आवाज
0: बिल्कुल हाँ। सही बिल्कुल सही कहा आपने वही है प्रोग्राम दिलों की आवाज तो हमें आप बताइए कि कौन सा गाना ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है दो लाइन हमें थोड़ा गाकर भी सुनाए आज हाँ देखिए हमारी आवाज आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं और आप खुद की भी आवाज सुन रहे हैं तो चलिए
1: हमें वहाँ पर भी सुन रहा हूँ
0: हाँ तो कोई बात नहीं आप रेडियो बाद में आप सुनना लेकिन अभी जो आप हमसे लाइव बात कर रहे हैं तो दो लाइन हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें भी आप गाकर सुनाएं
1: जी मैं गीत तो बहुत है
0: अच्छा कोई फेवरेट गाना चलिए कोई बात नहीं अभी हम यहाँ पर आज हम स्पेशल कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और चलिए अगर आप रेडियो सुनते हैं तो इतना तो आप कह सकते हैं दैट एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हैप्पी एनिवर्सरी रेडियो मनोरंजन को इतना कह देंगे हमारे लिए
1: जी हैप्पी एनिवर्सरी
0: थैंक यू देवानंद जी थैंक यू तो चलिए आपको बता दें कि आपने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब और एस्थेटिका की ओर से आपने जीता है 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर तो इसे आप अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं आपकी धर्मपत्नी है आपकी ममा है किसी को भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वाउचर आप तक पहुँचेगा और हमारी जो टीम है विल गेट इन टच विथ यू सो आप है रिव्यू जूपोस से आपने हमारा साथ दिया देवानंद परसन जी
1: डिस्टर्ब नहीं होना है जाकर लेना
0: क्यों नहीं नहीं नहीं आपको पोस्ट किया जाएगा सो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है बस पार्टिसिपेट करते रहिएगा और हमारे रेडियो को सुनते रहिएगा थैंक यू सो मच देवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद ओके बाय बाय हाँ जी ओके बाय
2: साल भर में सबसे प्यारा
3: RN Free रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बधाने RM 2 अने RM 3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ
4: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना
5: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदनलु
6: इनिय मुदल आंड निरेव नलवाटिकल RN Free RM2
7: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं
8: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक

0: आपके सितारे।
1: चलिए दोस्तों आपके सितारे, लेकिन आज हम लेकर आए हैं कविता कृष्णमूर्ति स्पेशल, लेकिन कह सकते हैं हमारे सितारे तो आप हैं, हमारे स्टार्स जो हमेशा अपना प्यार हम तक पहुंचाते हैं। और अभी के लिए स्टूडियो हमारा काफ़ी भरा भरा है। नर्मदा जी के बाद यहाँ पर वी हैव नीतू शाह और दीपशिका। वैसे तो यहाँ पर हमेशा हम रेडियो के जरिए आप हमारी आवाज़ सुनते हैं, नीतू के इतने ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स आप सुनते हैं जहाँ पर प्यारे प्यारे गाने आप तक पहुँचाती है, नए हो या फिर पुराने, स्वीट गानों से आपका मनोरंजन करती है, उनकी मीठी मधुर आवाज़ से आपका मनोरंजन करती है। तो चलिए अभी के लिए नीतू शाह हमारे साथ है। तो नीतू आप बताइए कि फर्स्ट ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाउ इज़ द फीलिंग?
2: फीलिंग एक साल जैसे बच्चा होता है ना वैसा ही होता है। नहीं दैट्स अ जोक, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमारी और हमारे जो श्रोता हमारे लिस्टर्स का साथ है वो तो बरसों से है कह सकते हैं, सालों साल हो गए हैं, लेकिन ये जो एक साल है बहुत स्पेशल है। कई नए आए हैं यहाँ पर, उनका साथ भी मिल रहा है, नए नए दोस्त हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे पता है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर खासतौर से देश से बाहर ट्रिनिडाद फिजी कनाडा इंडिया से भारत से भी कई लोग हमें सुनते रहते हैं। और बस ये जो अपनापन है ना, प्रॉक्सिमिटी हमेशा कहते हैं, वो बहुत ही खास है। तो एक बार फिर हमारे जितने भी श्रोता हैं रेडियो मनोरंजन, आप सभी को ये जो एक साल है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बधाइयां आप सभी को, क्योंकि हमेशा मैं कहती रहती हूँ अगर आप लोग नहीं है तो हम भी नहीं है। तो आपके बदौलत हम यहाँ पर आते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत सही कहा आपने नीतू, बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने। और यहाँ पर दीपशिका भी है जो इधर उधर हमेशा दौड़ती रहती है, जो इनाम है वो आप तक पहुंचाने के लिए आपको फोन कॉल्स करती है, लेकिन इनकी शुरुआत भी एज एन आरजे ही हुई थी। सो दीपशिका टेल मी हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ आर यू फीलिंग आज?
3: Today I'm feeling very, very, very special because we are celebrating the birthday and the anniversary of our both radios, Radio Manoranjan or Radio Masti. So thank you to everyone who is part of these two radios. थैंक यू।
1: और थैंक यू तो आपको कहना भी बनता है दोस्तों, बिकॉज जो आप हमें सुनते हैं रेडियो पर, ये हमारी आवाज़ तो आप तक पहुंचती है, आपसे हमारा कनेक्शन बनता है, लेकिन बिहाइंड द रेडियो भी इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, यानी कि माइक के पीछे ऑलरेडी हम होते हैं, लेकिन हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करते हैं, हमारा एक पार्ट बनते हैं। तो दीपशिका इज़ वन ऑफ दोज जो हमेशा साथ रहती है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी है।

0: तो वो उनका साथ देती है वैसे आज नीतू भी है यहां पर और नीतू हमें पता है कि आपको पुराने गाने बहुत पसंद है तो एक गाना आप हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा गुनगुना तो सकती
1: हैं मैं अभी यही कहने वाली थी दीपशिका कि बस हमारी एक पसंद का गाना चला दो इसने मेरे को ही फंसा दिया गाने के लिए तो चलिए बहुत ही सूदिंग सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जो गाना है इट्स सो स्पेशल जीवन के दिन छोटे सही लंबे बड़े दिल वाले कल ना ना फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले जीवन के दिन बहुत लंबे होते हैं कोई कहता है छोटा होता है लेकिन हर पल जियो जैसे आखिरी हो गाने तो इसी से हम लोग इंस्पायर होते हैं तो बस आप रेडियो सुनते रहे खुशी हो गम हो हर पल को बनाए बेस्ट से बेस्ट
0: थैंक यू सो मच नितुषा थैंक यू सो मच दीपशिका यहाँ पर आप आए और आपने अपना प्यार हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया तो बस इस प्यार को इस बॉन्ड को ऐसे ही बनाए रखेंगे एंड वंस अगेन बिग बिग थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स एक साल कंप्लीट हुआ है लेकिन ये तो बस शुरुआत है इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए
2: ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन साठी पहिल्या वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा पहिला वर्षनी वर्षगांठनी तमने बद्दाने RM2 अने RM3 तरफथी घणी घणी शुभकामनाओ
3: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का साल गिरा के ढेर बना शुभकामना
4: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदन लु
5: इदिय मुदल आंड निरेव नलवाटिकल ऑरेंज फ्री RM2
6: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं
7: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक
8: साल भर में सबसे प्यारा होता है
3: ऑरेंज फ्री रेडियो रेडियो रेडियो

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी और आपका प्यार, आपका साथ, अगर ये नहीं होता तो ये दिन पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे हम कहते हैं, जब भी हम जिंदगी में कुछ बदलाव देखते हैं, बदलाव को जैसे हम कहते हैं कि बदलाव को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कभी कभार चेंजेस को एक्सेप्ट करना ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर लिसनर्स जिन्होंने हमेशा अपना प्यार बनाए रखा। सो थैंक यू। और हमारे इस पहल के साथ यहाँ पर कोशिश यही रही कि आपको डिफरेंट रेडियोस पर डिफरेंट गानों का फ्लेवर मिलता रहे, बी एट RM2 रेडियो मस्ती या फिर RM3 रेडियो मनोरंजन। रेडियो मनोरंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी एंजॉय कर पाते हैं, और बी एट गुजराती, बी एट मराठी, बी एट हिंदी, हर एक का फ्लेवर आपको मिलता है। सो ये जो हमारा रेडियो है, इसके साथ हमारा एक अलग सा कनेक्शन है और ये कनेक्शन बनता है हमारे लिसनर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिफरेंट शोज की बात कर रहे हैं। एक साल कंप्लीट हुआ है और जब साल शुरू हुआ था, यानी कि जब हमने इस रेडियो की शुरुआत की थी, तो बहुत सारे शोज में बदलाव भी लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमने बात की दिलों की आवाज़ प्रोग्राम की, और एक और प्रोग्राम है जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं, जिसे आप सुन पाते हैं दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक, जिसमें होते हैं आपके पसंदीदा पुराने गाने। सो आपको हमें बताना है इस प्रोग्राम का नाम। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028070, यानी कि 4028070, या फिर अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं 5250620052506200। सवाल काफी सिंपल सा है। हमारा प्रोग्राम दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक जिसे आप सुनते हैं, जिसमें हम चलाते हैं आपके लिए कुछ पुराने गाने, आपको हमें उस प्रोग्राम का नाम बताना है। सही जवाब हमारे इन्हीं नंबर्स पर मैसेजेस अगर आप पहुंचाना चाहते हैं 5250620052506200, या फिर हमें कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं ऑन 4028070402807070 पर।

चलिए दोस्तों यहां पर आपसे हमने पूछा है एक सवाल और आपको हमें बताना है दैट जो हमारा प्रोग्राम है 12 से लेकर 2 बजे तक उसका नाम क्या है ऑन रेडियो मनोरंजन जीत सकते हैं ₹500 का एक स्किन केयर वाउचर ऑफर टू यू बाय नवेली और इस ₹500 के वाउचर को जीतने के लिए सिंपल सा सवाल आपके लिए हमें फोन कॉल कर सकते हैं 4028070 या मैसेजेस 5250620 पर

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, यहां पर सवाल पूछा था हमने कि हमारा जो शो है जिसे आप 12 से लेकर 2 बजे तक सुनते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन, उसका नाम क्या है। एंड यहां पर वी हैव अ लिसनर। हेलो जी। हेलो।
2: हेलो,
1: आपका नाम?
2: नमस्ते, मैं सरिता हूँ खरगोन से।
1: सरिता जी, आपका हम स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन पर।
2: धन्यवाद। सबसे पहले मैं रेडियो मनोरंजन को एक साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।
2: मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पुराने गाने बहुत पसंद है।
1: तो सही,
2: रोज मैं सुनती, अभी भी सुन रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ।
1: अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। तो हमने पूछा था कि हमारा वो जो शो होता है जिसे आप 12 से लेकर 2 बजे तक सुनती है, उसका नाम क्या है?
2: सुहाना सफर।
1: That's the right answer. Congratulations.
2: वेदिता पेश करती है रोज।
1: हाँ जी, हाँ जी, और वो टिकटॉक भी लाइव करती है जहाँ पर आप उन्हें सुन भी पाते
2: हैं।
1: तो चलिए, यहाँ पर सरिता जी आपने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो हमारी जो टीम है दे विल गेट इन टच विथ यू। और आपने जीता है ₹500 का गिफ्ट वाउचर, ₹500 का गिफ्ट वाउचर। ये है एक स्किन केयर वाउचर और ये आपको मिला है नवेली की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, और आपने इतनी प्यारी बातें हमसे की। और
2: आपकी आवाज बहुत प्यारी है,
1: थैंक यू।
2: मैं रोज आपको सुनती हूँ।
1: थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा। और बस एक बार अगर आप कह सकें हैप्पी एनिवर्सरी।
2: जी, हैप्पी एनिवर्सरी।
1: थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि देखिए, जब हमारे लिसनर्स के साथ मौका तो कम मिलता है जहां हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, और आपके मैसेजेस हमेशा मिलते हैं, लेकिन ये अलग बात है जब आपसे बात भी हो पाती है और जब हम

0: जानते हैं कि आप कितना साथ देते हैं हमारा।
1: बाय चांस आपसे बात हो रही है मुझे।
0: थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू, धन्यवाद। सुनते रहिएगा, प्यार ऐसे ही पहुंचाते रहिएगा और कोशिश करेंगे कि आपका मनोरंजन ऐसे ही होता रहे ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।
1: ओके,
0: थैंक यू, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय।
2: RM3 रेडियो।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो चलिए दोस्तों लेकर आए हैं आज आपके लिए कविता कृष्णमूर्ति स्पेशल एक बॉलीवुड की ऐसी आवाज जिन्हें हम कितने दशक से सुनते आ रहे हैं उनकी आवाज में एक अलग सी मिठास एक अलग सी स्वीटनेस और अभी के लिए बस उन्हीं की आवाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपका प्यार आपका साथ ऑन 5250 6200 5250 6200 जहां पर आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस हम तक पहुंच रहे हैं विजया जी हमारा साथ दे रही हैं आप भी तो चलिए यहां पर आपके लिए भी बहुत सारा प्यार गुड विशेस पहुंचा रही हैं वानिया और रेडी और कहते हैं सभी RM3 परिवार को बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू सो मच विजया जी वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं तो गाना आपके नाम प्यारी सी सरिता जी यहां पर आप भी हमारे साथ जुड़ी और अच्छा लगा आपने पार्टिसिपेट किया और कहती हैं दैट कटरबून से हमेशा साथ निभाती हूं बधाई हो रेडियो मनोरंजन को एक साल हो गया मेरा फेवरेट रेडियो है हमेशा जुड़ी रहती हूं अभी खाना तैयार करते हुए भी आप हमारा साथ दे रही हैं तो चलिए अभी के लिए लेकर आए हैं आपका प्रोग्राम आपके तारी और कहते हैं कि सुरों संगीत और सच्ची जानकारियों के साथ गूंजता रहे आपका ये कारवा पहली वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद मीन्स अ लॉट सहजेंद्र जी हमारा साथ देने हैं सहजेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू जी आपका ये प्यार हम तक पहुंचा आपके इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ सभी के लिए हमारा ये प्रोग्राम जहां पर लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटीफुल हिट्स ऑफ कविता कृष्णमूर्ति हमारा साथ दे रहे हैं आप तो साथ निभाते रहिए और गानों को सुनते रहिए फ्रॉम द फिल्म सर ये गाना आपके नाम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज और

0: वेंसडे 26 अगस्त, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RM3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ, सेव द डेट। बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसबेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेंसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। स्पॉन्सर्ड बाय लुटोवेयर, स्पॉन्सर्ड बाय लुटोवेयर।
1: तो जी हाँ दोस्तों, कल होने वाला है खास दिन जहाँ पर लेकर आएंगे एक रोड शो, जहाँ पर विदिता ने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पर हमारी टीम मौजूद होगी। तो उम्मीद करते हैं कल आपसे मुलाकात कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। 456 और अभिजीत दा और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें इसी गाने के साथ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट आवर की ओर।

बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RM3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसबेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.

आज हम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए कविता कृष्णमूर्ति स्पेशल लेकर आए हैं एंड जानवी हमारा साथ दे रही हैं बोनटेस से सो यहां पर प्यारे गाने होंगे आपके नाम एंड थैंक यू बस हमारा साथ देते रहिए स्पेशली फॉर जानवी ऑफ बोनटे एंड फॉर ऑल द लिसनर्स जो दे रहे हैं साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन खूबसूरत गानों का कारवां आपके सितारे प्रोग्राम जहां पर चला रहे हैं आपके लिए कविता कृष्णमूर्ति के कुछ ब्यूटीफुल डुएट्स सो हमारा साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स इस आवो में आपका वार्म वेलकम

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. गाने तो लाजवाब और यहाँ पर हमने बहुत सारे उनके सोलो और डुएट्स भी सुने. यहाँ पर कॉम्बिनेशन कविता कृष्णमूर्ति के साथ अलका याग्निक एंड कुमार सानू का फिल्म सलामी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना. वैसे फिल्म तो थी लव ट्रायंगल एंड यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है यानी कि आवाज़ों का ट्रायंगल, थ्री ब्यूटीफुल वॉइसेस जिसे आप सुन पा रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन, आपके सितारे प्रोग्राम डेडिकेटेड हमारी वन एंड ओनली टैलेंटेड सिंगर कविता कृष्णमूर्ति के नाम.

0: तो चलिए दोस्तों यहां पर साथ दे रहे हैं आप और यहां पर आशा जानू कॉटेज से हमारा साथ दे रही हैं कहती हैं हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी रेडियो मनोरंजन एंड रेडियो मस्ती और मामा कुमारी नेफ्यू शुभम ऋषभ दीदी आरती जीजू राज और सभी जानू परिवार इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं साथ में यहां पर जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू फॉर द लव थैंक यू फॉर द सपोर्ट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं एक और प्रोग्राम के साथ हमारी धरोहर जिसे आप सुन पाएंगे किरण जानकी के साथ
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
2: नमस्ते हमारी धरोहर में आप सबको के बहुत बहुत स्वागत बा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनावल जाला हर 12 अगस्त के इस दिन के घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा करल गल रहल और तब से हर एगो बरिस एकर पर एगो विषय रखल जाला आज दुनिया के हरियाली के सबसे जस्ती जरूरत बा ई वजह से थोड़ा समय से हरियाली और हमने के पर्यावरण और एको फ्रेंडली सामान पर ध्यान देवल जाता और पूरा दुनिया हरियाली पर पर्यावरण पर और एको फ्रेंडली होवे पर ध्यान देवता खाली जलवायु परिवर्तन और एकर से जुड़ल समस्या से निपटे खातिर ई नहीं करल जाला बल्कि जोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करे के हमने के बा 2030 तक उमें भी एको फ्रेंडली दुनिया के स्थापना

ना एगो लक्ष्य हा और इ दिशा में भी कार्य होवता। हरा भरा दुनिया के ओर बढ़े खातिर बहुत जरूरी बात जनता में हरियाली स्थापित करे के गुण कुशलता आने के और शुरुआत युवा पीढ़ी से ही हुई। कहे कि नवा नवा समाधान नवा नवा टेक्नोलॉजी के आधार पर जोन युवा लोग खोज करत हवन जा जोन काबिलियत उ लोग में बा वो काफी सराहनीय बा। आज ग्रीन टेक्नोलॉजी के रोजाना जीवन में काम करे के जगह पर स्थापित करे के टेक्निकल ज्ञान और कुशलता के बहुत जरूरत बा और ये काम युवा लोग के करे के प्रेरित करल जाता। युवा लोग हमने के ई पृथ्वी पर साल 2030 तक 57% संख्या रही। युवा मतलब 30 बरिस तक के उम्र होला व्यक्ति और ओकर से कमती। एगो सर्वेक्षण करल गल बा जेकर में ई बोलल गल बा कि 67% स्वसंसित पूसन लोग इस दुनिया में एगो बेहतर भविष्य पर विश्वास करेलन सा और 15 से 17 बरिस होला नौजवान लोग इस दिशा में सबसे जस्ती आशावादी हवन सा। युवक लोग के अगर सही जानकारी देवल जाए और उ जानकारी के अमल में आने के प्रेरणा देवल जाए तो विकास आने में डेवलपमेंट के दुनिया में ई लोग एगो बहुत बड़ा ताकत हवन सा हमनी के शक्ति हवन सा। ऐसा नेसन अंतर्राष्ट्रीय दिन ई ही दिखावे के हा कि जनता के ऐसन विषय ऐसन मुद्दा पर जागरूक करल जाए जेकर बारे में सबके चाहिए जाने के और युवा दिवस हमनी के युवा के शक्ति पर ध्यान देवे के और उन लोग पर विश्वास करे के एगो मौका है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। फिर मिलब जा। नमस्ते।

सन रनिया। शाम के ठीक 6 बजे हैं। नमस्कार, मंगलवार 25 अगस्त 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में आज ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश की याद में मनाया जाता है ये मुबारक दिन। फिनिक्स के आलिमिया कॉलेज में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य हस्तियाँ मौजूद रहे। पैगंबर की तालीम और इंसानियत के पैगाम पर जोर दिया गया। पोटली में आज सैंडवी पर्व मनाया गया। कैथेड्रल में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। बिशप जॉन मिकाएल जुरन ने रोजगार में भेदभाव का मुद्दा उठाया। सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया। दो दिन पहले रोशबुआ में 7 महीने के आद्रियानो पेरिन की दर्दनाक मौत और आज नम आंखों के बीच उसे अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों की सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारी को लेकर अपनी आवाज उठाई। मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच निवेश और कारोबार के मजबूत सेतु के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर। बालाक्लावा में आयोजित लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स में निवेश और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वैश्विक बदलाव और समाज की बेहतर योगदान के लिए राष्ट्रपति धर्मगोकुल को समारोह का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और विदेश में ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अमरीका ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है।

0: देश भर में मुस्लिम परिवार आज ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। ये मुबारक दिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीम और इंसानियत के लिए दिए गए उनके पैगाम को याद करने का ये ख़ास मौका है। इसी सिलसिले में फिनिक्स कैलिमिया कॉलेज में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। मौलाना मोहम्मद अनास सिद्दीकी ने ख़ास तौर पर पैगंबर हज़रत मोहम्मद की तालीम और उनके पैगाम पर रोशनी डाली। उन्होंने देश की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ भी की। मीगान पुना पनायकन, करुणा लालू।
1: इस वर्ष पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश की 1501वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हजरत मोहम्मद इस्लाम के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं।
2: Aujourd'hui nous avec grand la joie parce que c'est nous prophète sur naissance aujourd'hui, c'est grâce à lui qui nous gagne tout. Si nous là aujourd'hui, c'est grâce à lui.
3: C'est un guide pour nous, il y a un grand personnage. Et nous encourage tout le monde de nous suivre ce droit chemin.
4: Les montagnes, c'est une bonne manière. Vous êtes dans les cœurs pour maman, papa. Pour tout le monde en général, c'est tous les enfants qui allent à l'école. Tous les temps, maman, papa, ils m'occupent de leur bonne conduite. Et à l'école, je respecte notre professeur.
1: ईद मिलादुन्नबी का आधिकारिक जश्न कई गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में लगाया गया। इनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल शामिल थे। हल्काए कादरिया ईशाइत इस्लाम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने हजरत मोहम्मद की तालीमात और आपसी सद्भाव के साथ जिंदगी जीने की अहमियत पर जोर दिया। सैयद मोहम्मद अल हसनी ने कहा,
5: de vivre ensemble, qui nous demande d'être cohérents et de vivre en coexistence. Et cette coexistence, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire des ponts entre les communautés, les ponts entre les amoureux de chaque religion, de chaque prophète, de chaque obédience, de chaque religion, qu'elle soit ancienne ou récente.
1: Maulana Muhammad Anas Siddiqui, jo khas taur par is mauke ke liye मॉरिशस तशरीफ लाए, ने ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात की अहमियत और मौजूदा दौर में उनकी मुनासिबत पर जोर दिया।
6: दिस कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे एंड माशाल्लाह द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री हैज बिकम सो मच डिस्टिंग्विश्ड। मेरा दिस सेलिब्रेशन इज अ मस्ट, इट इज अ नीड ऑफ आवर हार्ट। It is a must for our soul. It is a duty of our human bodies. Aur milad hota rahega to hum chalte bhi rahenge. Milad hota rahega to ghar mein sukoon bhi hoga. Milad hota rahega to hamari zindagiyan kamyab bhi hongi.
7: Wahkum bima shita madhan fihi wa atakimi.
1: जश्न के दौरान रूहानी पेशकशें भी हुई।
0: दो दिन पहले खुशबा में 7 महीने के अद्रियानो पेरिन की दर्दनाक मौत और आज नम आंखों के बीच उसे अंतिम विदाई दी गई। दोपहर बाद अद्रियानो की अंतिम यात्रा उसकी मां के घर से नोत्र दाम दे लासोम्पसियों चर्च के लिए निकली। परिवार, करीबी और स्थानीय लोग इस दुख की घड़ी में साथ आए। इस मासूम की मौत ने समाज को भी झकझोर दिया है। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों की सुरक्षा और समाज की जिम्मेदारी को लेकर अपनी आवाज उठाई। पोटली में आज सेंट लुई पर्व की पुरानी परंपरा एक बार फिर निभाई गई। गिरजाघर में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और देश की कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। पोटली के बिशप जोमिकाइल जुगन ने अपने संदेश में रोजगार में भेदभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने सेंट लुई के मूल्यों से प्रेरणा लेकर समाज में अधिक न्याय और समानता की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही नौकरी की दुनिया से जुड़े मुद्दों के लिए एक आयोग की भी घोषणा की। सोमवार 24 अगस्त को एसएसओ हवाई अड्डे पर मॉरिशस और ब्रिटिश पासपोर्ट धारक 21 वर्षीय युवती को आदसू और कस्टम्स अधिकारियों ने दुबई से लौटने पर गिरफ्तार किया। उसके सामान से खिलौनों के 3 डिब्बों में लगभग 3.1 किलो

0: सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुआ जिसकी लागत करीब 50 मिलियन रुपए है। इसके अलावा दो मोबाइल फोन और 25 पाउंड स्टर्लिंग का नोट भी जब्त किया गया है। मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच निवेश और कारोबार के एक मजबूत सेतु के रूप में आगे बढ़ाना लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स में आज इस सोच पर खास जोर रहा। हिंद महासागर में मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति, अफ्रीका तक पहुंच और दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने वाले ढांचे जिनमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी शामिल हैं चर्चा के अहम पहलुओं में रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीति, व्यापार, कला और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मॉरिशस और भारत की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को वैश्विक बदलाव और समाज की बेहतर दिशा में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि पोटली में आज सेंट लुई पर्व की पुरानी परंपरा एक बार फिर निभाई गई। गिरिजाघर में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और देश की कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। क्लोडेज फाकादेवादू, रजनी पिकर।
1: 25 अगस्त गिरिजाघर की ओर से सेल्वी को सम्मानित किया जा रहा है। जरूरतमंदों के प्रति ध्यान एवं न्याय की भावना को लेकर उनके गहरे विश्वास के लिए हर साल की तरह श्रद्धालु, पादरी और महानुभाव उनके नाम पर रखे गए गिरिजाघर में आयोजित समारोह के लिए एकत्र होते हैं। इस मौके पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। साथ में राजा से संत बने इस महानुभाव के मूल्यों को भी याद किया गया। अपने संदेश में पोर्टलिस के बिशप ने सेल्वी के एक संदेश पर जोर दिया जिसका आज बोलबाला है सामाजिक न्याय। मोंसेयर जॉन मिकाएल जॉन ने कहा,
2: Être juste selon Saint-Louis, ce n'est pas seulement donner à chacun ce qui lui revient, mais aussi regarder la personne derrière la situation. Et reconnaître sa dignité qui ne dépend ni de sa richesse, ni de son statut, ni de son origine. Le discernement nous demande d'écouter. Cette écoute fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui dans l'Église catholique la synodalité, le marcher ensemble.
1: मोंसेयर जॉन मिकाएल जेरोन ने अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी बात की ताकि अधिक सामाजिक न्याय हो, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन, लॉ रिफॉर्म कमीशन, ट्रूथ एंड जस्टिस कमीशन आदि का भी जिक्र किया गया।
2: Tout en venant avec des recommandations pour une révision des lois existantes, en collaborant aussi avec ceux qui ont la responsabilité au niveau de notre société civile, l'État. Et d'autres collaborateurs, cela doit aussi s'accompagner d'un volet éducatif pour changer les mentalités.
1: इस समारोह के अंतर्गत गिरिजाघर की ओर से छोटे बच्चे आद्रियानो को भी याद किया गया जिसकी मौत पिछले रविवार को हुई। साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में साइकिल रेस में अहम जीत हासिल करने वाली किम्बर्ली लेकोर दुबियो को बधाई दी गई। सेल्वी का पर्व पीढ़ियों से चलती आ रही है और ये एक परंपरा है। लोग प्रार्थना करने के लिए पोर्टलिस शहर इतिहास के बारे में जानने के लिए एकत्र होते हैं।
0: कोविड 19 के दौरान डायलिसिस मरीजों की मौत की न्यायिक जांच में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के तीन अधिकारियों ने क्यूपिप की अदालत में गवाही दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर हेल्थ रिकॉर्ड ऑफिसर के मुताबिक अप्रैल 2021 में क्वारंटीन केंद्र बनाए गए तमाशा होटल में ठहरे मरीजों से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। मॉरिशस और सीशेल्स के बीच पुराने और करीबी संबंधों को संसदीय स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम। सीशेल्स की राष्ट्रसभा की स्पीकर आजाहल अनिस्ता ने आज अपनी मॉरिशन समकक्ष शरीन ओमिरुद्दी जिफ्रा से मुलाकात की। इस अध्ययन यात्रा के दौरान दोनों देशों की संसद के कामकाज, अनुभवों और अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करने पर जोर दिया गया। सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसी संदेश के साथ अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज ADPS ने सड़क सुरक्षा

0: सुरक्षा को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान शुरू किया है। ADPS रोड सेफ्टी प्लेज नाम की इस पहल के जरिए लोगों को नियमों के डर से नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान में अलग अलग कंपनियों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जा रहा है।
1: सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो रोजाना हमारी सड़कों पर सफर करता है। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश के तहत अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज अपने रोड सेफ्टी प्लेज अभियान के तहत सीधे कर्मचारियों से उनके कार्यस्थल पर जाकर मुलाकात कर रहा है। विभिन्न कंपनियों में प्रेजेंटेशन और बातचीत के जरिए संगठन के प्रतिनिधि वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की याद दिलाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात अच्छे और सुरक्षित व्यवहार को लगातार अपनाने पर जोर दिया जाता है। जेगी अनुदय कहते हैं, अन्य चालकों राहगीरों पर भी ध्यान देना चाहिए, गाड़ी की जाँच करनी चाहिए। योगिनी कंदन कहती हैं, गाड़ी चलाने से पहले खुद को तैयार करती हूं कि मैं गाड़ी चला सकूंगी या नहीं। कर्मचारियों के बीच इस संस्कृति को लगातार याद दिलाना हमेशा अच्छा होता है। सड़क पर कुछ गलत व्यवहार से जुड़े खतरों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और जानकारी देने के सत्र आयोजित किए जाते हैं। ओशन ट्रैशर के एडमिन अकाउंटेंट्स मैनेजर कनेन अनिया काउंटन कहते
2: हैं,
1: हमारी कंपनी में कई चालक हैं और उनके बीच जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज के लिए जागरूकता फैलाने का मतलब केवल नियमों या उल्लंघन की स्थिति में होने वाली सजाओं को याद दिलाना नहीं। अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज की प्रोग्राम डायरेक्टर दीक्षा रामदवा कहती हैं, इस प्लेज पर हस्ताक्षर करने से खुद से वादा करते हैं कि ऐसे व्यवहार अपना रहे हैं जो उचित हो और इसका हमेशा पालन करना चाहिए। हमारी सड़कों पर व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सोच में बदलाव भी जरूरी है। इस अभियान के जरिए अफ्रीका डेवलपमेंट प्रोग्राम सर्विसेज ज्यादा जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है।
0: श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष समय। इस पवित्र महीने में श्रद्धालु पूजा अभिषेक मंत्र जाप और प्रार्थना के जरिए महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। शिव भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, इसे मन की शांति, समर्पण और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग भी माना गया है। भगवान शिव को देवों के देव, महादेव और परम कल्याणकारी माना जाता है। श्रावण मास की ऐसी ही भक्ति का भाव वापिन्युरे त्यागूज के रामेश्वरनाथ मंदिर में देखने को मिला, जहां भक्तों ने भगवान शिव की आराधना कर सुख, शांति और कल्याण की कामना की।

0: भगवान शिव को कल्याणकारी और आदि योगी माना जाता है, जिनकी सच्ची भक्ति जीवन में सत्य, पवित्रता और सबका कल्याण चाहना है। शमशान की भस्म और गले में विष धारण करने वाले भगवान शिव हमें ये संदेश देते हैं कि मनुष्य अपने अहंकार और विकारों को त्याग कर ही वास्तविक भक्ति को प्राप्त कर सकता है।
1: शिव जी ने दोनों ला फोज आकोसान कोटा पे
2: शिव जी के भक्ति से बहुत हमने के बरकत हुए ला, हमने के सुख शांति और सेहत के भी बहुत अच्छा परेला।
0: ध्यान, आत्म अनुशासन और आत्मनिरीक्षण से जुड़ी ये साधना समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के प्रति समरसता और समानता का भाव सिखाती है। यही वजह है कि अन्य देवी देवताओं से भिन्न सहजता के प्रतीक आशुतोष शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे आडंबरों की नहीं बल्कि एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चे मन से जपे गए ओम नमः शिवाय मंत्र की ही आवश्यकता होती है।
3: जिसको सबकी भक्ति प्राप्त हो जाती है वो शिवमय हो जाता है। भक्ति का नाम तुलसीदास जी के अनुसार श्रद्धा ही भक्ति है, विश्वास ही भक्ति है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। माता पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शिव स्वयं विश्वास हैं। तो भक्ति के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि हमारे मन का विश्वास ही भगवान शिव की भक्ति

0: श्रावण मास के इस पवित्र महीने में शिव आराधना का ये महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है जब चारों तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारों के बीच भक्तगण इसी सहजता और निष्ठा के साथ देवाधिदेव महादेव को जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति अपने भीतर के विकारों को त्याग कर परम शांति ज्ञान और शिवत्व को प्राप्त करने की एकांतरिक यात्रा है। शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूँ यानी मुझ में भी वही कल्याणकारी चेतना है का ये बोध ही शिव भक्ति की पराकाष्ठा है जो अंततः जीव को मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाता है। मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच निवेश और कारोबार के एक मजबूत सेतु के रूप में आगे बढ़ाना लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स में आज इस सोच पर खास जोर रहा। अशिता रघु।
1: मॉरिशस में एक मंच पर जुटी राजनीति कारोबार और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स के सातवें संस्करण के माध्यम से मॉरिशस के राजनीतिक नेताओं कारोबारियों निवेशकों और रचनात्मक जगत की जानी मानी हस्तियों ने एक सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही क्षेत्र में मौजूद निवेश के अवसरों को समझने और मॉरिशस के जरिए दूसरे अफ्रीकी बाजारों तक पहुँच बनाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ।
2: Monsieur Vijay Darda et de son organisation Lokmat qui prend l'initiative Ville Maurice et Monsieur qui Owen Abeuve qui aujourd'hui peut faire une award cérémonie pour Banjou qui fait un gros succès dans différents secteurs mais il prend une occasion pour Banla ouvrir l'Isier qui était qui ban opportunité et dans Maurice pour aller envers l'Afrique.
3: Agar Hindustan ko kuch karna hai बदलाव लाना है तो यही गेटवे जो यहाँ से हम लोग अफ्रीका की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हम अफ्रीका क्यों जाना चाहते हैं कि वहाँ की जो मिनरल्स है उनको यूज़ करें हम लोग। यहाँ की जो ह्यूमैनिटी है मानवता है वो बढ़नी चाहिए, इक्वलिटी बढ़नी चाहिए। केवल कुछ इंडस्ट्रीज घराने नहीं पनपने चाहिए तो साथ साथ में छोटे जो उद्योजक है वही रोजगार दे सकते हैं।
1: सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने मॉरिशस में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में रुचि दिखाते हुए टेक्निक निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सेक्टरों पर चर्चा की।
4: टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मॉरिशस में आके कुछ बिल्ड करें जो इंडिया से हम यहाँ लेके आए, तो हम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आए उसी के साथ साथ हम एआई को भी जोड़ रहे हैं। तो एआई और ब्लॉकचेन मिलके पूरी देश की जो भी अर्थव्यवस्था है जो इकोसिस्टम्स है या जो भी काम करने के तरीके है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ट्रेसेबिलिटी है आइडेंटिटी है ऐसी ढेर सारी चीज़ों के लिए हम भारत से मॉरिशस भी आना चाहते हैं, मॉरिशस में निवेश करना चाहते हैं, मॉरिशस में कंपनियां खोलना चाहते हैं।
1: बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह की मौजूदगी ने फिल्म उद्योग और मॉरिशस के बीच संभावित सहयोग शूटिंग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर भी चर्चा का रास्ता खोला।
5: मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एक तरह का जो सॉफ्ट पावर होता है कंट्री का जो जो कल्चर्स को जोड़ता है जो कंट्रीज को जोड़ता है जो बियॉन्ड लैंग्वेज एक तरह का कनेक्ट बनाता है। एंड आई थिंक सिनेमा से बेटर फिल्म से बेटर और कोई मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। वी वर इन थाईलैंड इफ आई लुक्ड राइट आई फेल्ट लाइक आई वाज इन अमेरिका समवेयर व्हेन आई लुक्ड लेफ्ट व्हेन आई लुक्ड एट द हिल्स एंड इट्स जस्ट अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ वेरिड यू नो सीनरीज यू हैव इज ब्यूटीफुल।
1: सम्मेलन में उपस्थित मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को प्रतिष्ठित लोकमत ग्लोबल चेंज मेकर आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया जो वैश्विक बदलाव में योगदान के लिए अलग अलग राष्ट्र नेताओं को दिया जाता है। कूटनीति से कारोबार तक टेक्निक से संस्कृति तक लोकमत वन वर्ल्ड समिट ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग के कई आयामों को एक मंच पर लाने की कोशिश की।
0: और विदेश में ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। नई कार्रवाई के तहत 60 लोगों संस्थाओं और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने

0: वाली देशों को भी अमरीकी वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच खोने का खतरा हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी देश या चीनी बैंक को सीधे निशाना नहीं बनाया गया है। उधर तेहरान ने अमरीकी दबाव का मुकाबला करने की बात कही है और भरोसा जताया है कि उसके बड़े व्यापारिक साझेदार वाशिंगटन के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। और आखिर में चली जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल करुणा लालू के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि आज रात के दौरान आसमान में बादल घिर आएंगे और कल सुबह भी देश के पूर्वी हिस्से तथा ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है। इस बीच देश के पश्चिमी हिस्से तथा सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिर आएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 26 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और स्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी लहरें 2 मीटर तक हो सकती है। सूर्यास्त 5:59 पर, कल सूर्योदय 6:24 पर।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:23 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। सोहन लेन गौन पॉइंट पीमाओ में 57 साल की 57 years old की श्रीमती दुलहंती गोपी, जो विश्वानी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके घर सोहन लेन गौन पॉइंट पीमाओ से उठाकर पॉइंट पीमाओ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30। एलियन सन्स रॉयल रोड बुबासे में 69 साल के 69 years old के श्री लोमेश प्रसाद सिंह जगरनोथ, जो रोशन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे एलियन सन्स रॉयल रोड बुबासा से उठाकर शिबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

0: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल बुधवार 24 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक ईडीसी ग्रीग्री में और आसपास के इलाकों में जैसे कि विलाज दे ग्रीग्री और डोमेन ग्रीग्री सुयाक में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
0: श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बुधवार 26 अगस्त को शाम 4:45 बजे नेहरू भवन बेल्वी मोगल शाखा नंबर

13 नेहरू भवन रॉयल रोड बेल्वी मोगल में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। प्रवचन आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु द्वारा होगा। बुधवार 26 अगस्त को शाम 4:30 बजे श्रावण मास के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में बोनाकई राजपूत समाज शाखा नंबर 14 मिशन क्रॉस रोड बोनाकई में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहा है।

0: वेडनेसडे 26 अगस्त, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RN3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ, सेव द डेट, सेव द डेट। बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसबेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutaware.
1: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

दुनिया है वो बस अपने में लगी रहती है और ये हम हमेशा चाहते हैं कि अगर सब साथ मिलकर चलें सब एक दूसरे का हाथ साथ लेकर चलें तो ज़िंदगी जो है वो कुछ और ही बन सकती है यानी कि ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में अगर कोई अपना साथ हो या फिर कोई ऐसा दोस्त जो हर कदम आपके संग रहे या किसी भी सिचुएशन में आपका हाथ ना छोड़े ऐसा तो हर कोई कर सकता है लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है बट यू कैन बी दैट पर्सन जैसे हम कहते हैं अच्छी बातों की हम बात करते हैं लेकिन अगर दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले बदलाव हमें खुद में लाना ज़रूरी है सो डू गुड दोस्तों बी गुड और लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम नई सोच जहाँ पर हम अच्छी सोच के बारे में बात करते हैं पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं अच्छाई के बारे में बात करते हैं और हमारे जो लिसनर्स हमेशा साथ देते हैं तो थैंक यू सो मच आज का दिन है खास सेलिब्रेटिंग वन ईयर यानी कि एक साल का हुआ है आपका रेडियो मनोरंजन तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए आपके साथ के लिए अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ कुछ प्यारे गानों के साथ आपका म्यूजिकल जो डोज है वो हम आप तक पहुंचाएंगे फॉर नाउ इट्स योर टाइम जहां पर लेकर आते हैं नई सोच प्रोग्राम साथ रहेगा अभी से लेकर रात के 9 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ कहना चाहते हैं आप भी कुछ आपके मैसेजेस आपके 5250620000 पर

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: ये तारा वो तारा हर तारा बस बात तो यही है कि एकता के साथ कितना कुछ हो सकता है यानी कि लाइफ में अक्सर हम देखते हैं कि आजकल की जो

0: RM3 Radio.
1: तो चलिए पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं. लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ तो बस इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपका नज़रिया कैसा है. अभी के लिए ये गाना ऐसा है जो हर किसी को मोटिवेट करता है. ज़िंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी को अगर आप एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं तो हर हार में भी आपको जीत नज़र ज़रूर आएगी. और तभी तो कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशंस क्यों ना आए, एक्सपीरियंस आपको हमेशा मिलता है और वही एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ने के लिए और हौसला देता है. सो वेल फ्रेंड्स, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहेंगे, प्यारे गाने आप तक पहुँचाते रहेंगे. कैलाश खैर की आवाज़ में ये मोटिवेशनल गाना, और इसी गाने के साथ बनने वाले हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज़ की ओर. मैं ऊपर ही आपके साथ रात के 9 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ, लेकर आएंगे कुछ रोमांटिक गाने.

0: RM3 Radio. Radio.
1: So, well, ऐसे ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एवरी इवनिंग आप एंजॉय करते हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ. दिलों की आवाज प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए रोमांटिक गानों का साथ. आपकी शाम को बनाएंगे स्पेशल. जैसे कि आप जानते हैं, आज एक साल कंप्लीट किया है आपके अपने रेडियो मनोरंजन ने, तो बस इस प्यार को बनाए रखिए. एंड यहाँ पर कह रहे हैं प्यारी परी जी, हैप्पी एनिवर्सरी. रेडियो मनोरंजन के लिए गुड विशेस भेज रही हैं हमारी प्यारी सी रेखा जी. कहते हैं प्रोग्राम तो होते हैं सुपर से ऊपर और एंजॉय करते हैं हम हर प्रोग्राम को. अभी के लिए रेखा जी, ये गाना आपके नाम फॉर बेटा अंश एंड पोंबोंजे से हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लिसनर्स हैं उनके नाम, स्पेशली हमारी प्यारी सी रेखा जी के नाम. सो गुड विशेज आपको और बेटा अंश के.

ये भी प्यार एंड स्पेशल विशेज. वेल हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी आरएम टू एंड आरएम थ्री. थैंक यू फॉर फिलिंग आर नाइट्स एंड डेज विद बेस्ट म्यूजिक. दैट्स कमिंग फ्रॉम अपारू परिवार जो हमेशा साथ निभाते हैं. दारिन श्वेता रविश प्रीशा लवशा साथ देने के लिए शुक्रिया. आरएम टू हो या फिर आरएम थ्री आपका प्यार हमेशा रहा है साथ एंड इट मीन्स अ लॉट. सो टू ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक. यह है आपका अपना प्रोग्राम दिलों की आवाज़. उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ें फिल्म है राजा. एंजॉय दिस वन.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: साथी मेरे सुन तो जरा।
2: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।
3: और चलिए दोस्तों, दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। यहाँ पर स्वीनल हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं दैट हैप्पी एनिवर्सरी टू RM2 एंड RM3। हर रोज़ ट्यूनिंग रहती हूँ मैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ, और ये दिखाता है कि कितने लोग 90s के गानों को पसंद करते हैं। तो चलिए डियर स्वीनल, दिस वन गोज़ आउट फॉर यू, भाई श्रवण, भाभी कृति, साथ में है अभिनव, कियान, नव्यान, तिलक परिवार, और हमारी डियरेस्ट हंसनी के नाम भी एक स्वीट सा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं। दिस वन गोज़ आउट सभी तिलक परिवार के लिए, और कहते हैं एक साल कंप्लीट हो गया RM3 और शो को पसंद कर रही हैं। गाना फॉर वाइफ सबिता, एंड कहते हैं दैट बस ऐसे ही गानों को सुनेंगे और पसंद करेंगे। ज्ञान बिहारी जी हमारा साथ दे रहे हैं आप, और कहते हैं दैट जो वाइफ है शी लव्स लिसनिंग टू द प्रोग्राम, और हमेशा वो साथ देती हैं, सो इट मीन्स अ लॉट ज्ञान जी। चलिए अभी सभी बिहारी परिवार हमारा साथ दे रहे हैं, स्पेशली फॉर योर वाइफ सबिता, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव है, सुनील, रानी और शीतल, सभी के लिए भेज रहे हैं प्यार विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म रेफ्यूजी, और ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम, सभी दोस्तों के नाम। यहाँ पर गुलशन जी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं और जुड़ चुके हैं आप हमारे इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल कारवां में, और कहते हैं दैट एक प्यारा सा गाना हो जाए फॉर ममा।

प्रभा, सिस्टर दीक्षिता, लवली एंजल, आयशा, सभी भोला परिवार के नाम और स्पेशली हमारी हंसनी के लिए भी अर्ज किया है. एंड दैट्स ओनली फॉर आयशा. हम तो खामोशी से अपनी पहचान बना रहे हैं. शोर करने का शौक हमें कल भी नहीं था और आज भी नहीं है. एंड दैट्स रियली ब्यूटिफुल. आई एम श्योर दैट इन गानों के साथ आप अपनी पहचान बना रहे हैं और अपना प्यार आप पहुंचा रहे हैं टू योर लवली लवली एंजल. सो वेल फ्रेंड्स, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस यहाँ पर हो रहे हैं ऑन 5250-6200-5250-6200, जहाँ पर आप नॉर्मल मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके दिल का हाल हम तक पहुँचा सकते हैं. और इसी गाने के साथ बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. परी का साथ है, दिलों की आवाज़ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

0: RM3 Radio. Radio.
1: सो रात का टाइम जहां पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे मॉर्निंग से लेकर रात तक साथ तो आप निभाती हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेहाना जी फ्रॉम फिनिक्स, हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू। खूबसूरत गानों के साथ आपका मनोरंजन होता रहेगा ऑन रेडियो मनोरंजन और साथ रहेगा रात के 9 बजे तक इन योर प्रोग्राम दिलों की आवाज़। लता मंगेशकर उदित जी की आवाज़ें और ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नॉट टू फॉरगेट, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर हमारा वही है 5250-6200-5250-6200 पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Wednesday 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market. दिन के 10 बजे से 11 बजे तक पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर तो जरूर हमारा इंतजार करें साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी गुडलैंड्स पोर्ट लुइस रॉसबेल एंड फ्लैक तैयार हो जाइए हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी Sponsored by Lutavere.

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए खूबसूरत गाने हैं यहाँ पर ऋषि जी हमारा साथ दे रहे हैं कहते हैं दैट सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट एनिवर्सरी टू सिबलिंग्स RM2 RM3 एंड लव हैप्पीनेस टुगेदरनेस जो सॉन्ग्स हैं इन्हें आप पसंद करते हैं सो थैंक यू सो मच ऋषि जी साथ देने के लिए शुक्रिया और यस सभी आरजेज हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको एंटरटेन हम करते रहें खूबसूरत गीतों के साथ अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन साथ जुड़े हमारे सभी लिसनर्स वी हैव द सोलफुल गाना सिट बैक रिलैक्स करें इस खूबसूरत गाने को सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजें कभी अलविदा ना कहना दैट्स द टाइटल ट्रैक आप सभी के नाम
2: तुमको भी है खबर मुझको भी

और चलिए दोस्तों इसी गीत के साथ इट्स टाइम कि मैं परी लूँ आपसे अलविदा। आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया और बस कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे ही हम एंटरटेन करती रहें। ये है आपका अपना आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन। मुलाकात होगी इसी रेडियो पर बहुत ही जल्द। भूलेगा नहीं कल होने वाला है एक स्पेशल रोड शो जहाँ पर अक्रॉस द आइलैंड हम जाने वाले हैं और जिस भी एरिया में जाएंगे कोशिश रहेगी कि हमारे जो डियर लिसनर्स हैं उनसे कुछ इंटरेक्शन कुछ मुलाकात हो सके और उनके साथ कुछ हैप्पीनेस हम भी शेयर कर पाएं। साथ दीजिएगा आप ऑन रेडियो जहां पर सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और चलिए दोस्तों अभी के लिए तो समय हो चला है कि मैं आपसे लूँ अलविदा। मुलाकात होगी जल्द। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन के साथ।

आफ्टरनून डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।

0: Music. RM3.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा

चार मिनट हुआ था सब संगत यारों के आज प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम भोजपुरी दल का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे ले आज है मंगर की रात मंगर 25 अगस्त साल 2024 मन करा था कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमा हुआ का जगो दे विद जगो विद सैंक पर का जगो दे विद जगो विद सैंक पर और एक से एक बढ़िया भोजपुरी गीत ने सा ये प्रोग्राम में ढेर कुछ रही खाना खजाना एगो क्विज चलाओ अब से रात के 9 बज के आधा और जिके मिली ओके मेरी 500 रुपये के वाउचर और एक खुशनसीब विनर के मिली 500 रुपये के एगो वाउचर और ये वाउचर दिया जाता नवेली की ओर से और बेशक अगर तू सही जवाब दे ला तो लापस परे तोरा लॉन्ग लूप में विदा हुई तोहर वाउचर सब तू 500 रुपया के खरीदारी करी 9 बज के आधा आज रात के क्विज रख रही सर गो खेल प्रतियोगिता 9 बज के आधा और प्रोग्राम में ढेर कुछ बा बॉलीवुड न्यूज एगो कहानी खाना खजाना जीवन के बारे में कुछ बातें और ढेर कुछ बच्चे आप सही प्रोग्राम में भोजपुरी तड़का जी हाँ ढेर कुछ मिला सीखे के और गमत भी होला नाच गाना भी होला मस्ती भी होला पर ढेर कुछ सीखे के भी मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है रात के 9 बज के 6 मिनट होता है पहला गाना तू ले ले नीरज गुप मधु की तो अगले वन और है कि तो हमने चलाओ थे इस संगत यालू के नाम और आज यमुन नबी बात यमुन नबी बहुत बहुत मुबारक अल्लाह ताला से प्रार्थना करब से दुआ करब से कि यमुन नबी के त्यौहार सबके जीवन में ढेर माना प्यार और खुशी रहे तो है गाना चलाओ से रेहाना हसनानी के नाम अबन फिनिक्स राफित मोहिक तायाक से भाई अबू वाकवा से रोजिदा हाईलैंड से इब्राहिम पोर्टवी से फातमा न्यू ग्रोव से और आफिस वन लाविनिया सैंपिया से सबको की बोलता है यौ नबी बहुत बहुत मुबारक

डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे। August 26th, save the date. होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं Goodlands New Market दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, Port Louis Urban Terminal।

0: मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्टलुइस, रॉसबेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere. Lutavere.
1: जहाँ रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के एक साल पूरा होला, एक साल हो गल, तो हैप्पी बर्थडे रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती है दुगो चैनल खुलल बा 24 घंटे चलो के मनोरंजन खातिर। तो काल बीतिया बोले काल ढेर मना बीते हो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर ई जगह में अभी जान सुन रिक्लामो में। और रात के 9:15 याद दिलाते हो थे जा रात के 9 बज खाते हो क्वीज हमने कर अब से यहाँ पर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। और जीते होला के या जीते होला के मिली विनर के मिली 500 रुपये के एगो वाउचर। अपन किस्मत जरूर आजमाइए। रात के 9 बज के आधा भी 9 बज के 15 मिनट हुआ था। और संगतिया लोग एगो जेपी सर जे के बोला सर लवंग के जेहोफ बोला सर किडोली भाषा में और अंग्रेजी में क्लो बोला सर। तो ये मसाला के स्वाद के अनुसार है और लवंग के देर मना कर महत्व है। दांत के दर्द कम करे रही लवंग और बेशक जब दांत दुखा लाते गो लवंग पीस के दांतों में डाल दे बता वो दर्द थोड़ा कम कर देवेगा। फिर हमने के डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प कर पाचन में सहायता करेगा और एक में एंटीऑक्सीडेंट बा लवंग में और भरपूर मात्रा में ये जो है एंटीऑक्सीडेंट बा। सर्दी जुकाम से हमने के बचाव वाला लवंग एक दो लवंग मुँह में डाल ले बा दांत में पीस बा तो सर्दी जुकाम सब भाग जाए। और मुँह के दुर्गंध दूर करेला लवंग। सूजन से जुड़ल प्रक्रिया और खाना में उपयोग होला लवंग। सब्जी में डराला, पुलाव में, चाय में, मसाला में या मिठाई में भी। और ध्यान रखिए कि लवंग के ढेर मात्रा में नहीं खाए के चाहना ओके चाहना जीस खाए के मुझे आशों से। और यही लवंग जो है स्वास्थ्य खातिर बहुत लाभदायक है। का जो देवी जगह पर अगला सब बजा टेलीफोनी करे और टेलीफोनी करे जब गीतवा फिनी हुआ था। अब गीतवा शुरू हो रहा तो टेलीफोनी करे रहा सर तो कैसे थोड़ा लाइव पास कर अब सर ऐसे नहीं हो रहा। अभी देखा म्यूजिक चला था बैकग्राउंड म्यूजिक तो अभी सब टेलीफोनी करे तभी नहीं सुने कर तो जैसे गीतवा शुरू हुई सुने कर बहुत नहीं सकब से ली जब गीतवा समाप्त होकर रही तो टेलीफोन ही करिए 4020085 4020085 पर। गीता का चादर के भोजपुरी के मत गीत अभी चली है। गीतवा चलाओ दे सर रवि बंगारू और सब परिवार के नाम लेडी जागुआ रवि दिनू कर पत्नी कर माता पिता और सब दिनू परिवार के नाम चित्रा और ज्ञान विश्राम है। गीत और गतिर रहसा मौदार बे फिर लोंग चिबुक राजा स्टीव नानो प्रवीण भैरव श्याम मंगल ये सब संगतिया खातिर संजीव चरिया अगला गाना सुदेश जसवा कर्मा राजकुमारी और बेटी जन इटली में बा राज मन्ना भी उनके साथ देवतवन। और बिरात के जितना कोई हमने की सुना था बहुत बहुत प्यार से तय गीत तो लोग के नाम भोजपुरी गमत।
2: गमत हुआ होला भोजपुरी जहाँ चलेला गमत हुआ।

रात के 9:20 हुआ था और अब चलता रहा सुना अब जाएगो प्यारा सन कहानी कमीना दोस्त की कहानी। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दुगो जिगरी दोस्त रहता है। दोनों बचपन से साथ साथ पढ़ा थलन सा खेला थलन सा और एक दूसरे के हर मुसीबत में साथ देवा थलन सा। रमेश सीधा साधा और मेहनती लड़का रहा, सुरेश चालाक और बहुत रहल। बाकी ओकर आदत रहे कि वो अपन फायदा खातिर दूसर के नुकसान भी सकी करे। एक दिन रमेश के बाबूजी ओकरा पढ़ाई खातिर कुछ पैसा दे के बोलन, बेटा ये पैसा से अपन किताब कापी खरीद लिया और बाकी पैसा संभाल के रखिया। रमेश बाजार जाए खातिर सुरेश के साथ ले गल। रास्ता में सुरेश के नज़र रमेश के पैसा पर पड़ल। उमन में सोच लग अगर ये पैसा हमार हाथ लग जाए तो खूब मजा करब। सुरेश रमेश के बहकावत बहकाए की कोशिश कर लग बोलक, रमेश चला पहले नदी किनारे घूम के आविला सा, किताब बाद में खरीदब सर। रमेश ओकर बात मानने लग। नदी किनारे पहुंच के सुरेश एगो चाल चल लग। उ बोलक, तू अपना पैसा हमरा लगे रख दे, कहीं गिर न जाए। रमेश अपन दोस्त पर भरोसा करके पैसा ओकरा दे देलक। कुछ देर बाद सुरेश चुपके से पैसा लेके गांव वापस भाग गल। रमेश जब लौट के बाजार आल तब सुरेश कहीं ना मिलल, ओकरा बहुत चिंता होल। तब वो घर पहुंचल और सुरेश के बारे में पूछ रख, पता चलल कि सुरेश घरे भी ना आल बा। रमेश के समझ में चलल कि ओकर दोस्त ओकरा धोखा देलक। दूसरा दिन सुरेश वो पैसा लेके बाजार में अपन मनपसंद सामान खरीद आने लगल। संयोग से गांव के एगो बुजुर्ग ओकरा देखलक। वो सुरेश के रोक के पूछलक, बेटा ये पैसा कहाँ से आए। सुरेश बहाना बना के बोललक, बाकी बुजुर्ग ओकर बात पर भरोसा नहीं करलक। गाँव में बात फैल गल और जब रमेश से पूछा गल तब वो पूरा सच्चाई बता दिलक। गांव के लोग सुरेश के खूब समझेलक। सुरेश के ऐसा भय कि वो

अपन लालच में एगो सच्चा दोस्त के धोखा देलक उ रमेश से हाथ जोड़ के बोललक भाई हमर से बहुत बड़ी गलती हो गल लालच में आके हम तोरा धोखा दे दिए तोर पैसा से खूब गमत कर ली। रमेश कुछ देर तक चुप रहल फिर बोललक गलती के माफी मिल सकेला बाकी हम दोस्ती में भरोसा टूट जाए तो ओकरा फिर से बना के मुश्किल रहेला। सुरेश अपन गलती सुधारे के फैसला करलक उ रमेश के पूरा पैसा वापस कर देलक मेहनत करके ओकरा किताब कापी खरीद के देलक। धीरे धीरे सुरेश अपन बुरा आदत छोड़ देलक। गांव के लोग भी ओकर व्यवहार में बदलाव देखलन सा और बोलन सा हाँ ई छोकरवा बदल गल बा। त कहानी के सिख ई संगतिया लोग कि सच्चा दोस्त उ होला जे सुख दुख में साथ देवेला ना कि अपन स्वार्थ खातिर दोस्त के धोखा देवेला। लालच या स्वार्थ से दोस्ती टूट सकेला बाकी ईमानदारी और विश्वास से दोस्ती के रिश्ता बनेला। तू भी अगर दोस्ती करब तो अपन दोस्ती निभाइया अपन दोस्ती में धोखा नहीं दिया। अगर तोहर दोस्त है तो ओकरा प्यार करेला तो ओकरा पसंद करेला तोहर जिगरी दोस्त है तो हमेशा ओकर साथ दिया ठीक बा कामाखो नहीं बनिया। अगला गीत सुनील कुमार गैले हवन शादी करा दे अमृता गणेश पीतों से हवन हमने के साथ देवत हवन और मेविन के ओर से गीत चली जानवीर के लिए जानवीर हिरन बोनते हैं प्रेमिला हकाटो बोन से शोभा पोंपले मुझसे शोभा वाकवा से रीता की रीता और रेणुका के ओर से लोग दुगो भाई बा संदेश और प्रीतम है गीत और लोग खाते चली हरीश नारायण रहेलन मिडलैंड गीत तोहर खाती राधा शिवालक देविका रामगतिया है गीत तोहर नाम और तोहर सब परिवार के नाम भी और चंपा रामगतिया है गीत तोहरों नाम चल एक साथ सुनब जा शादी करा दी

संगतेरो खाई गीतों के बाद चली गो क्विज कंपटीशन गेट रेडी फॉर द क्विज और सही जवाब दे बा तो तोहरा मेरी 500 रुपये के वाउचर हाहा और 5 मिनट में क्विज कंपटीशन शुरू हो जाए

जी हाँ संगत लोग, जिससे हम थोड़ा बोले रहे कि 9 बज के आधा हमने क्वीज चलाओ सर क्वीज उन्हें स्पॉन्सर नवेली की ओर से एगो सवाल पूछा अगर जवाब सही देबा तो थोड़ा मेरी 500 रुपये के वाउचर नवेली की ओर से और ये थोड़ा लापूस पर हमने विदा करब सर ध्यान से सुझिए हमने की सवाल अगर एक को सही जवाब मिली तो एक को विनर रही अब धे बना सही जवाब मिली तो एगो चार्ज ओसो करब सर और चार्ज ओसो के बाद बोलब सर की कर जीत और बाद 10 मिनट ले क्वीज चली अभी से विरात के 9 बज के आधा 9 बज के आधा से 9 बज के 40 मिनट तक तो ध्यान से सुनिए हमार सवाल अभी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चला था प्रोग्राम भोजपुरी तड़का तोरा हमने की बताया गया चला कि रेडियो मनोरंजन की फ्रीक्वेंस कौन सी है तीन गो निमरों पर ई फ्रीक्वेंसी में चला था प्रोग्राम हमने की टेलीफोन करा और सही जवाब दे के कोशिश करा काट जगो दे विद जगो विद सैंक काट जगो दे विद जगो विद सैंक फिर से थोड़ा बड़ा था सवाल तो हमने की बताओ कि कौन फ्रीक्वेंस में रेडियो मनोरंजन जो आगाजो है ये एफएम मोड पर चलेला और कौन निमोगो पर तीन गो फ्रीक्वेंस में ये रेडियो चलेला हमने के तीनों फ्रीक्वेंस के निमोरो बताओ काजो दे विद जगो विद सा काजो दे विद जगो विद सा जब तक तू हमने के जवाब देवत हो तब तक सुना है भोजपुरी गीत प्रकाश की आवाज में ऑल द बेस्ट गुड लक अपन किस्मत आजमाओ

बगन बगन। और हमने के सवाल बहुत आसान ना हम तोहर से पूछ ली। अभी क्विज चला था खेल प्रतियोगिता, हमने के बतावा कि रेडियो मनोरंजन के फ्रिक्वेंस तीन गो नंबर पर है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, हमने के बतावा। अभी ले सबको एक गलत जवाब देवा था, पर अभी और 5 मिनट बा कोशिश करिए। तो हमने के बतावा आई रेडियो मनोरंजन के फ्रिक्वेंस के निमोगो कौन से, तीन गो निमोगो पर चला था ये प्रोग्राम FM मोड पर। और सही जवाब जिदे तो ओकरा मेरी 500 रुपये के वाउचर नवेली की ओर से, और अगर सही जवाब देवा तो लापूस परे तोहर वाउचर तोहर लग गया। ऑल द बेस्ट, गुड लक वंस अगेन, कोशिश करा जा किस्मत आजमावा। तो और जवाब हमने किस जगह दे, विद जगह विद सैंक पर, काट जगह दे, विद जगह विद सैंक पर।

ए दीदी या पीस दीदी पीस मसाला तसा तसा तकारी बा हरिन के मच्छी के पीस दीदी पीस।

भाई बहन लोग और तीन मिनट रगल भाई खेल प्रतियोगिता समाप्त हो के खेल स्पॉन्सर है नवेली की ओर से और जरा सही जवाब मिले मिली 500 रुपए के गो वाउचर के सवाल जो ना बहुत आसान हमकी किशो बहुत सैंप है तो और से पूछ ली कि है जो रेडियो मनोरंजन सुना था वह एक फ्रीक्वेंस कौन सी है तीन गो फ्रीक्वेंस तीन गो नियमों पर एफ एम पर चला था तो हमने के बता के चला तीन गो फ्रीक्वेंस सही जवाब दे वह तो थोड़ा 500 रुपए के गो वाउचर मिली कार्य उदय विजय थैंक पर सब बजा टेलीफोन करें और

जहाँ संगतिया लोग अभी अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछ ली सर सवाल बहुत ही आसान रहा तो से पूछती कि रेडियो मनोरंजन के फ्रीक्वेंस कौन सी है तो सब गलत जवाब खाली एक उस सही जवाब दिलक आप हवन श्रीमती दीना नैनन आपने ब्रिज में या कंग्रेचुलेशंस बधाई हो बधाई सही जवाब है 94.6 98.2 MHz यानी कि 94.96.6 and 98.2 MHz तो बहुत बहुत बधाई हो मिसेज दीना नैनन रहन ब्रिज में सुयाक सही जवाब दिला और तोरा मिला था नवेली की ओर से 500 रुपये के को वाउचर तो कैसे करबा है कादवा मिले खातिर कुछ सेवा करके लापुस से परे हमने तोरा विदा करब सा है वाउचर और ये वाउचर से तू सकबा 500 रुपये की खरीदारी करे नवेली लगे तो एक बार फिर जितना कोई खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे सब बहुत बहुत धन्यवाद देर इज ओनली वन विनर कंग्रेचुलेशन आवर विनर इज मिसेज दीना नैना जो रहती है ब्रिज दो में सुयाक है ये और ये जीत

के साथ खेल प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त हुआ था। चला दीना नैनान है भोजपुरी गीत और खाते चाहते तोहर जीत और बा बहुत बहुत बधाई कंग्रेचुलेशन यू आर द विनर है गीत और खाते तोहर घरोला तोहर बेटी और सब दीना नैनान परिवार के नाम। चल एक साथ सुनाए गीतवा कंग्रेचुलेशन मिसेस दीना नैनान।

रात के 9:55 होता तुसा तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन भोजपुरी तरका प्रोग्राम रात के 11 बजे मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमावा काजगो दे विद जगो विद साक संगते लोग थोड़ा बता दे रहा कि हाई सुख के लिए वैचित वनरजी वैचित उठ के हमने मनावा दे मॉरिशस में और दुनिया भर में रक्षाबंधन के त्यौहार और रक्षाबंधन के त्यौहार जो ना भाई बहन के अमर प्रेम के त्यौहार और बहन लोग अपन भाई की कलाई में राखी बांध दिलन से आशीर्वाद मांग लन से कि भैया तू जीवन भर हमार रक्षा करिया और जब भी कोनो प्रॉब्लम रही थे हम तो द्वारा आप तू हमके मार्गदर्शन करिया और भाई भी जो न वादा कर रहा बहन से कि जीवन भर वो अपन बहन के साथ दे अपन बहन के दिल कबू नहीं तोड़ी तो है जो त्यौहार है बहुत ही पवित्र और पावन त्यौहार है रक्षाबंधन के त्यौहार और ये हम की याद दिलावला कृष्ण भगवान भी वादा कर ले रहा सुभद्रा से ओकर बहन से कि वो जब सुभद्रा जब भी कोनो मुसीबत में रही तो कृष्ण भगवान को सहायता करी और एक बार कृष्ण भगवान जो ओकर उंगली से सुदर्शन चक्र से ओकर उंगली कटाकर ब्लिस से गुरल तो द्रौपदी तुरंत अपन साड़ी फाड़ के जो कृष्ण भगवान के उंगली लपेट दिलक और कृष्ण भगवान वादा कर लक कि वो द्रौपदी की रक्षा करी और महाभारत में जब द्रौपदी के वस्त्र हरण होला तब तो बखत द्रौपदी कृष्ण भगवान की याद करे और कृष्ण भगवान द्रौपदी के लाज बचावेला तब भाई ऊह जोन बहिन बहिन के लाज बचावेला अपन बहिन की रक्षा करेला तो जोन त्यौहार है बहुत ही पावन त्यौहार है पवित्र त्यौहार है हर भाई इंतजार करेला अपन बहिन के कब अगर बहिन आए राखी बांधे तन जाने से भी बहिन लोग तैयारी करता गाटू तो बनावत वन से गुलाब जामुन लड्डू पेड़ा धे मना गाटू है अपन भाई की खुशी करी खातिर और बहन लोग चोरी चोरी कादू की लगवा भाई लोग भी चोरी चोरी कादू की लगवा तो जितना भाई बहन लोग जितना मॉरिशस वासी और दुनिया भर के लोग हई सुख लिवैचित उत के रक्षाबंधन मनयन से हमने की ओर से हमारे परिवार की ओर से एमबीसी रेडियो की पूरी टीम की ओर से रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती की ओर से ढेर माना शुभकामना ढेर माना प्यार रक्षाबंधन बहुत बहुत अभिनंदन हो

0: Continuous music. RM3.
1: On the hour, every hour.
2: Radio Marches.
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

0: के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: रात के 10:02 होता और भोजपुरी तड़का प्रोग्राम जारी बार रात के 11 बजे ले हम हैं तो लोग के होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह सीताल हुआ को संगतिया लाइन पे। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी नमस्ते।
2: जी हाँ नमस्कार।
1: तोहर शुभ नाम?
2: मैं विद्या बोल रही हूँ काठरबोन से।
1: तोहर स्वागत बा बोला।
2: धन्यवाद। आज मेरी माँ की जन्मदिन है। हाँ। जो काठरबोन में ही रहती है।
1: बहुत बहुत बधाई हो माता जी को।
2: धन्यवाद धन्यवाद। शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार उनके बेटे प्रकाश की तरफ से। तीन बेटियां हैं लीना वंदना विद्या दामाद शैलेश पंडित हंसराज जी और रिया यश निर्वाण और अग्निर समस्त परिवार विशेषर परिवार मोहल परिवार की तरफ से देवनारायण के परिवार की तरफ से भी। और बस यही मैं एक गाने की फरमाइश कर सकती हूँ।
1: हाँ बोला कौन गीत सुन बा।
2: चरनिया धरीरा चरनिया
1: के गए गीतवा के गए लगभग
2: मुझे सुनीता ननकू
1: सुनीता ननकू गीतवा कैसे शुरू होला फिर से बोला।
2: एक मिनट
1: ओके।
2: हेलो
1: हेलो जी नमस्ते।
2: नमस्ते
1: कैसे समाचार?
2: अच्छा
1: तोहरे जन्मदिन रहा?
2: जी हाँ।
1: जन्मदिन बहुत बहुत अभिनंदन हो ढेर मना प्यार आशीर्वाद। और गीतवा के बोल कैसे शुरू होला?
2: धरिला चरनिया तुहार हे जगदम्बे
1: हे जगदम्बे सुनीता ननकू गीतवा गए लगबा।
2: जी हाँ।
1: ओके है गीतवा तोहर खातिर और ढेर मना प्यार आशीर्वाद पूजा पाठ हो निमन से। ओके ओके हाँ परिवार लोग सबको आ रहा है सब परिवार लोग
2: नहीं परिवार लोग
1: ने भी थोड़ी थोड़े थी में जा
2: परिवार चल गए
1: ओके ओके तो फिक्र नहीं कर।

0: ठीक है सुनीता अंकुर के गीत चला दियो आपसे थोड़ा खातिर हाँ, ओके
1: रोशन आप सीखती
0: हाँ जी बहुत
1: सीखती
0: बहुत
1: के जन्मदिन भी हाँ
0: ओके
1: उनका पत्नी और रोशनी बहन
0: हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद और अम्बे मैया के गीत मंगले हुआ तो चला ये गीत हम तोहर खातिर चलाओ तो जिता के जन्मदिन भाई गीत तोहरों नाम

कब-कब अकेला रहला में ही जस्सी अच्छा रहेला काहे कि जब अकेले जीब त कोई तोर संगे लोड नहीं डाली कोई तोरा कोनो हुकुम नहीं दे अकेले रहबता जब तोहर मन करी तू नींद से उठबा अपन मर्जी से खाईबा पीबा अपन मर्जी से घूमबा कोई तोरा रोक टोक नहीं करी और इकरे बोला लावी से ही बात है देख कोई खुशी रहे सन लावी है सिंगल Not ready to mingle, they love to be single. अगर तू भी सिंगल हुआ, तो अगला गीत और खातिर छोड़ दे तू हमके गिरीश हरलोल की आवाज़ में गीत सुनाओ जा और है गीत वाचरी खासम खास आशा जानू खातिर आप रहेलन को तेज फिर कर्मा कुमारी शुभम दीदी आरती जीजा जी सब जानू परिवार के नाम नवीन जान की गीत और खाती तौर पत्नी तौर बेटा सब जान की परिवार के नाम लाफों से प्रेमी ने हमने के साथ देवतोन नदी वाला दोस्त हमन वैंकूवर कनाडा में है गीत तौरों नाम और है गीत चली कुनाल हीरे लाल की ओर से कर परिवार कर लेका पत्नी सब परिवार के नाम संजय हरिचंद गीत और खाती तौर पत्नी संध्या तौर बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार पीतों से पूर्णिमा फकीरा गीत और खातिर और तो सब परिवार के नाम चाची ललिता कुशल अवंत खयोले से गीत चाचा आत्माराम चाची प्रभावती नवेलफों से भाई हरीश बबासन से हवन और कामिनी हवन रोजिल से ताहे गीतवा जन हत्तो लोग के नाम और जितना कोई रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सुनता ता गीत हत्तो लोग के नाम ते संग तेरु तेरे होने प्रताप जी आज टिकटॉक पर नहीं आवत वन नहीं आज टिकटॉक पर नहीं पोता आप तेह भैया जिन व्यक्ति हमारे से आगे काम कर लग पोता बात छाव जो नहीं कर लग तो कैसी टिकटॉक करब सा कोई बात नहीं अगली बार टिकटॉक करब सा है अभी रेडियो पर हम तो साधे होते सर रात की ग्यारह बजे रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर प्रोग्राम भोजपुरी तर का रात के 11 बजे ली

0: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे। Wednesday, 26th of August. Save the date. होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RN3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं Goodlands New Market दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, Port Louis Urban Terminal Mall दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, Roswell Mall by West दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, Flack Taxi Stand next to bus station शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.
1: रात के 10:26 अगला गीत पैसा न कौड़ी धनाजी नावजी गीत वगैरह वन और सुनन चितन की भी उनके साथ हुआ था। वन भाई सुनन कैसे बात कैसे मिल अब जा ढेर समय से आतान का लब के। हेलो भाई सुनन, कैसे समाचार?
2: ठीक है। रेडियो वन नहीं,
1: रेडियो वन नहीं है, रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती।
2: बधाई हो,
1: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक साल हो गल बा हमने के तेलो के साथ ही रेडियो पर। और कैसे समाचार, सब ठीक ठाक?
2: सब ठीक है। और आप ठीक है?
1: हाँ एकदम ठीक ठाक। और बोला कौन गीत सुनबा?
2: हम
1: जाने सुनन के गीत। हाँ सुनन के कौन गीत बोला?
2: जब बेटा मार दिया तो क्या है?
1: हो देख अब किसके बेटा मार दे रखो।
2: हमारे बेटा नहीं है, हमारे तो सब बेटी है।
1: हाँ बेटी बार बेटी दामाद लोग बाय ना।
2: चार को दामाद है।
1: तो चार भगवान तोरा दामाद के रूप में बेटा दे दिलक हो कि नहीं?
2: हमरे बेटा।
1: और गीतवा तोहर खाते तोहर बेटी तोहर दामाद और सब चितन की परिवार के नाम, ठीक बा? और तू हवा लेस्कालिये से
2: नहीं, सच
1: बे अभी राखी सुख के बाद

0: आ बहनो गाय राखी बांधे
1: कुजिना गीता
0: हाँ आवेला राखी बांधे
1: हाँ आवेला हाँ
0: खादो दो किन के रखे हैं कंजूसी नहीं करिया उस दिन अरे भाई सुजन बहुत बहुत धन्यवाद अम्मी की टेलीफोन कर ला शुक्रिया शुभरात्रि ओके बाय बाय तय भाई सुनन चितंकी राज जो ना हमेशा हमने के साथ देवे रहना और बहुत बहुत प्यार से ढेर कोई अभी हमने के सुना था रवीश मंडु हवन मोहतावास से कर माँ बाप कर भाई भौजी सब मंडु परिवार कमला जी नू के उसे कर चीज़ अफारोही खातिर प्रीति और रेशमा माता बदल हगीत माइंद्रानी पापा सुरेश और सब माता बदल परिवार के नाम मिशन क्रॉस रोड लाल माटी के रविराज सिन्हा बिचू का गीत और कथित और पत्नी स्वयं प्रभा तोहर लयिका प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार के नाम शास्त्री बनमाली है गीत और कथित तोहर पत्नी तोहर बेटा विवेक बेटी दामाद और सब बनमाली परिवार के नाम लव कुश त्रिपाठी मोहताबासे और सब दादा दादी नाना नानी चाचा चाची लोग सब बड़ा आदमी लोग खाते रह गीत चली और पहले MGI कॉलेज में ही सब अध्यापक लोग काम करते रहन सर मिसेज बंधन मिसेज झमन मिसेज ओकर और मिसेज जमादौ तो गीत खासम खास तो लोग के नाम करते हैं सर सुना नयन के आवाज़ में और खासकर सुरंची टंकी के पसंद पर सुना नयन का गीत चले एक साथ सुने

0: बोल बोले सुना नो यान के आवाज में रबिया को संगते ऑनलाइन पे को समझ जा हेलो हेलो
1: हेलो
0: अमृता जी नमस्ते आप हवन पीतों से कैसे समाचार
1: करेक्ट बा
0: कैसे भी रक्षाबंधन की तैयारी करते हो सुके रक्षाबंधन हो
1: थोड़ा थोड़ा
0: थोड़ा थोड़ा मिठाई सब
1: थोड़ा धीरे धीरे
0: मिठाई मिठाई सब तैयार कर दे रहे हो ना
1: पॉपकॉर्न
0: कई गो भाई लोग बा
1: एक भाई
0: हाँ और बड़ी दुलार के या
1: सुना
0: नुयन गीत चल गल सुनता नन को कौन गीत
1: चमेली
0: चल चमेली आले गीत वाके का खाती
1: चमेली चमेली
0: गीत वाके के का खाती मांगते हो
1: des petits enfants बेटा बहु है
0: हाँ और petits enfants लोग बहुत प्यार से
1: मेरा
0: बहु मीनाक्षी और जिंदगी में कौन सी करेला अमृता घरे रहेला काम पे जाला
1: ना
0: घरे घरे राजू सुने रहा टेलीविजन दिखेला कैसे बुझा रहा हमने की रेडियो प्रोग्राम
1: आले भाई
0: आले बहुत बहुत धन्यवाद तुमने के साथ दिवा था तो अगला गीत और खातिर और बोली ऐसा संगतिया लोग की कबू कबू जो छोटा छोटा बात लेके घर में बड़ा बड़ा झगड़ा हो जा रहा महाभारत हो जा रहा कभी बिना भेद की मार पिटैया भी हो लगेला हम तो भैया छोटा छोटा बात के गंती नहीं लेला छोटा छोटा बात की गंती ले कैसे हो जेब पगला हो जेब डिप्रेशन में पड़ जेब अगर तू खोज तो अच्छी तरह से जिएगी तो छोटा छोटा बात पर तू ध्यान नहीं दिया तू जनिया जो काम करते हो वो अपन काम से काम मतलब रखिए वो अभी कौन सी सोचेला कौन सी बचाला इस सब के का साथित नहीं करिए अगर लोगन से का साथित कर तो जिए नहीं सकब चमेली चमेली सुनता ननको के गावल के तौर गीत चलावते सब बांसरोपन परिवार के नाम काटो बोन से वन फिर महाराणा प्रताप लेन थ्रेविश के हर को परिवार कलकतिया परिवार जिराखंड परिवार सब परिवार थ्रियोले से हवन शालिनी हिरू हवन लाफलोगा से गीत तोहर घरोला विशाल तोहर दुगो बेटी तोहर भाई कृष्णा और सब हिरू परिवार के नाम है गिचरी और ये गीत हमने चलावते सा सेंट ओबेंसिस हेस कॉलेज के रेक्टर ने वहाँ के टीचर नन टीचिंग स्टाफ और सब स्टूडेंट्स लोग के नाम और जितना लड़का लोग है बारी सा एनसे करी पेशा करियन सा और घाट 11 और घाट 13 जितना एनसे के लड़का लोग पेशा के लड़का लोग फॉर्म टू के लड़का लोग ऐसे और अच्छे ऐसे के एग्जाम्स में भाग लिया सा सबको की बड़ी सा ऑल द बेस्ट गुड लक फॉर द एग्जाम्स पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया और एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो जा हमने की शुभकामना तो लोग के

आजकल सावन मास चला था और घर घर में पूजा हुआ था या जवन होता वेद पाठ हुआ था और अभी 28 अगस्त ले बैंचुत उतले अभी सावन मास चली उकर बाद वेंकटेश्वरा पूजा गणेश चतुर्थी और ढेर मना कागम अभी ढेर कोई बात जितना कोई व्रत धारण करा तुल के व्रत सफल हो या आजकल ढेर कोई शाकाहारी भोजन करता और शाकाहारी भोजन की कमी नहीं बा और हमने की पुरानिया लोग हमने की हमेशा बतेलक बाकी जब कायम रब सब तक कौन कौन जगह से व्यंजन तैयार करे व्यंजन की कमी नहीं बाए जैसे सकप से दाल भाजी खाए पनीर रुगाई में कदुआ भुंजल गोपा चिपुरी सोया के रुगाई दाल पीठा खिचड़ी सब्जी की बिरयानी भुंजल लालू कटहल की तकारी ओलामुन की चटनी बैगन की चटनी बैगन की तरकारी ढेर मना शाकाहारी भोजन बा तो जितना कोई अभी व्रत धारण कर लग बा और घर घर में वेद पाठ पूजा पाठ हुआ था तब भगवान से प्रार्थना करब सब की तो लोग के व्रत सफल हो सावन मास का महीना सबके मंगलमय हो अब थोड़ा सा नाचब सा गावब सा झुमब सा दुल्हन के दादी है दुल्हन की दादी जो है इसन जोड़ी गीत गैलक बा शोभा रामचंद्र फकीर आजकल गीत सगरो शादी में संगीत में और खूब चला था और ढेर को ये गीतों पर बड़ी जोर नाचा था हम जब गीतों सुने तो खूब नाचे चले एक साथ नाचब सा और गावब सा संगे संगे दुल्हन के दादी

पारे हवा सामने के संगे नाचे के गावे के झूमे के रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर दुल्हन की दादी के संगे संगे दुल्हन कैसे बा तो दादी संगे संगे आवा लोकनी ए

गीत संगीत में बड़ी शक्ति बा और जितना कोई स्ट्रेस होलन सा तनाव में रहेलन सा या ढेर मेंटल स्ट्रेस रहेला तो गीत संगीत अगर तू सुन बा तो थोड़ा स्ट्रेस कमती हो जाए स्ट्रेस वा सौ पूसा नहीं भागेगा पर स्ट्रेस कमती हो रहा कहे के गीत में जो है एगो थेरापी है ला थेरापी दे ला म्यूजिक म्यूजिकल थेरापी तैसन अच्छा अच्छा गीत चलाता तैसन गीत सुन के तोहर सब स्ट्रेस दूर हो जाए तोहर मूड भी सेट हो जाए रात के 10:53 होता और बेशक हमनी तो लोग के साथ देवत है सा अभी रात के 11:07 में ही प्रोग्राम समाप्त हो जाए हमने जान ही रहा सा कि जब हमने आए रहा सा ढेर कोई हमने के सुनेला रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और जब टिकटॉक पर रही रहा सा ढेर कोई हमारे साथ हमारा दिखेला माफी चाहते आज टिकटॉक नहीं सके सके कहे कि पोता बात तय बा बहुत जिन व्यक्ति हमने से अगर चार्ज नहीं कर लाक से मांग कर अब सर कि जब हमने आए से आगे पोता बात चार्ज कर दे कि ताकि सक अब सर टिकटॉक करे टिकटॉक पर ढेर कोई हमने के साथ देवेला तो अभी जितना कोई रात के हमने की सुनोता रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर बहुत बहुत धन्यवाद उनके साथ दिखाते रहिए इसी टेलीफोनिंग करते रहिए और हमने के साथ देते रहिए हमने हमेशा से तो लोग के साथ अभी से नहीं हुआ 25 साल पहले जब एमबीसी फॉर ए साइड में रहा तब से लेके आज ले हमने तो लोग के साथ देते आले सर दे साथ देवते सर हमेशा जब ले हमने के दिल में धड़कन बा हम जब तक हम के सांस से रहता हमने तो लोग के साथ देव जा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती पर एमबीसी रेडियो एगो संगतिया बोल एमबीसी का मतलब है मो बॉन कामराड एमबीसी तो चले गए अंतिम गीत सुनब जा जी हाँ कुणाल हीरेलाल के आवाज़ में और जबकि कुणाल हीरेलाल की बात करते सत्ता थोड़ा बता जा कि 22 सितंबर के जो फर्स्ट ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट भोजपुरी में हुई है और सिनाल

त्रियोली में, और है जो कंसर्ट रही ये सबसे बड़ा कंसर्ट रही जो भोजपुरी के क्षेत्र में मेबा तभी शक जलसा की रात का नाम रही जलसा की रात। और है में जो ढेर कलाकार लोग भाग लिए भोजपुरी भाषा के लेके, और कर में 26 सितंबर के बैंक्वेट हॉल आर्सेनल में जो है प्रोग्राम हुई रात के 7 बजे से। और थोड़ा बन करता टिकट किने के तो टिकट सक बजा किने बेशक जलसा की रात 26 सितंबर आर्सेनल में। और जो प्रोग्राम रही और जैसे कि हम बोले कि एगो भोजपुरी कंसर्ट था है, और एक में धेमना कलाकार लोग भाग ले चिरंबा राम तोहल नीरज गुप मधु किशोर खिमिया कुणाल हिरेलाल रोशन सरा सिंह कृषि मोनिक धेमना डीजे लोग रहे ने डीजे नील स्पाइकी डीजे वकील डीजे अभी डीजे आनी। टिकट प्रीसेल रहा 500 रुपया और 800-700 रुपया। तो ज़रूर आइए जा आर्सेनल में 26 सितंबर की रात के 7 बजे जलसा की रात बा। अभी चेरा कुणाल हिरेलाल की आवाज़ सुनब साई गीत मार ताली मार। हाय गीत के संगे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है रात के 9 बजे से अभी हमने के 7 बजे तक लोग SMS और फोन कॉल करते शुक्रिया। हमने के चलो के मुलाकात हो कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे ले यही कार्यक्रम में भोजपुरी तरह का प्रोग्राम है। कल तक हमने के इजाजत अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल बाय बाय गॉड ब्लेस नमस्ते बाय बाय।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओं, रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं तो आप सबका हार्दिक अभिवादन सुनहरे पल कार्यक्रम में। आइए आज एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अनगिनत गाने गाए हैं, उनके सोलोज, उनके डुएट्स। तो आज खास तौर से उनके जो युगल गीत माने कि डुएट्स हैं, सब तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन हाँ जो बेस्ट है, जो सबसे पॉपुलर है, उनमें से कुछ आपके नाम नजर करते हैं। साथ निभाते रहिएगा।

तो श्रोताओं, आज के सुनहरे पल कार्यक्रम को हम नजर करते हैं मोहम्मद रफी साहब के नाम। जी हाँ, जब भी हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की दुनिया में लिया जाता है तो दिल में एक अजीब सी मिठास, एक सुकून और एक रूहानी एहसास जाग उठता है। रफी साहब सिर्फ एक महान प्लेबैक सिंगर नहीं थे, बल्कि वो आवाज के ऐसे जादूगर थे जो हर गीत को उसके किरदार, मूड, सिचुएशन और इमोशंस के मुताबिक एक नई जिंदगी दे देते थे। उनकी आवाज में मोहब्बत थी, शरारत थी, दर्द भी, मस्ती भी, भक्ति भी और जिंदगी का उत्सव भी था। और जब बात उनके डुएट्स की हो तो हिंदी फिल्म म्यूजिक का एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन अध्याय हमारे सामने खुल जाता है।

रफी साहब के डुएट सॉन्ग्स की सबसे खास बात थी उनकी अडैप्टेबिलिटी। वो जिस भी फीमेल या मेल सिंगर के साथ गाते, उनकी आवाज उस सिंगर के सुर, अंदाज और एक्सप्रेशन के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाती थी कि दोनों आवाजें एक म्यूजिकल कन्वर्सेशन के रूप ले लेती थी। उनके डुएट में कभी सवाल जवाब होता था, कभी रोठना मनाना, कभी शरारत, कभी इश्क का इजहार और कभी जुदाई का दर्द।

0: बदकम्मा, बदकम्मा,
1: यंकन्ना, यंकन्ना,
2: बदकम्मा।

अगर फीमेल सिंगर्स के साथ रफी साहब के यादगार डुएट्स की बात करें तो सबसे पहले लता मंगेशकर के साथ उनकी जोड़ी याद आती है। रफी साहब और लता जी की आवाजों का कॉम्बिनेशन हिंदी सिनेमा के सबसे लेजेंडरी म्यूजिकल पार्टनरशिप्स में से एक माना जाता है। दोनों की वोकल रेंजेस अलग होने के बावजूद उनकी वॉइसेस एक दूसरे को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करती थी। कभी रफी साहब की आवाज में नरमी और लता जी की आवाज में कोमलता, तो कभी दोनों के सुरों में एक रोमांटिक इंटेंसिटी सुनाई देती थी।

जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा जैसे गीत में कमिटमेंट और इटर्नल लव का एहसास है तेरी बिंदियारे में शादी और प्रेम की खुशी ढल गया दिन हो गई शाम में प्लेफुल रोमांस तस्वीर तेरी दिल में यादों की मिठास इन सभी गीतों में रफी साहब ने सिर्फ सुर नहीं गाए बल्कि हर लव्स को इमोशन दिया

0: करेगा।
1: रफी साहब और आशा भोसले जी की पेयरिंग एक बिल्कुल अलग रंग लेकर आती थी। आशा जी की एक्सप्रेसिव, प्लेफुल और एनर्जेटिक आवाज के सामने रफी साहब भी अपने अंदाज को सिचुएशन के मुताबिक बदल देते थे। इन दोनों के डुएट्स में रोमांस के साथ साथ मस्ती, नोकझोंक और यूथफुल एनर्जी भी सुनाई देती है। अभी न जाओ छोड़कर इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस गीत में एक तरफ रुकने की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ जाने की मजबूरी, और रफी साहब की आवाज़ एक इमोशनल कन्वर्सेशन को बहुत ही नेचुरल बना देती थी।

हजारों उन्होंने गाए हैं और उनकी यही वर्सिटैलिटी उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी। वो एक पल में सीरियस रोमांटिक हीरो बन सकते थे और दूसरे ही पल में प्लेफुल मिस्चीव लवर। मिस्टर रफी साहब और गीता दत्त जी के ड्यूएट्स भी अपने आप में बहुत खास थे। गीता जी की आवाज में एक नेचुरल वार्म्थ और अर्थ चार्म था, जबकि रफी साहब की आवाज में क्लैरिटी और स्वीटनेस। दोनों जब साथ आते थे तो गीत में एक इंटीमेट और कन्वर्सेशनल क्वालिटी पैदा हो जाती थी। उनकी आवाजों का मिलन पुराने हिंदी सिनेमा के रोमांटिक और लाइट हार्टेड म्यूजिक को एक अलग ही चौम देता था।

सुमन कल्याणपुर जी के साथ भी रफी साहब ने कई खूबसूरत गीत गाए। सुमन जी की मधुर आवाज और रफी साहब की क्रिस्टल क्लियर सिंगिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेसफुल लगता था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे गीतों में रफी साहब की एनर्जी और कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, जबकि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे जैसे सॉन्ग्स में रोमांस

रफी साहब के डुएट सॉन्ग्स की एक बड़ी खूबसूरती थी उनकी मेल सिंगर्स के साथ बॉन्डिंग। किशोर कुमार जी के साथ जब रफी साहब ने डुएट या मल्टी सिंगर सॉन्ग्स गाए तो हिंदी सिनेमा को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकल कॉम्बिनेशन मिला। किशोरदा की डीप इनर्जेटिक और स्लाइटली मिस्चीवस वॉइस के सामने रफी साहब की स्मूथ और वर्सेटाइल वॉइस एक वंडरफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती थी।

मुकेश जी के साथ रफी साहब की आवाज का कॉम्बिनेशन एक अलग ही इमोशनल डेप्थ लेकर आता था। मुकेश जी की आवाज में दर्द और सिंप्लिसिटी थी, जबकि रफी साहब की आवाज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज। दोनों जब एक साथ गाते थे तो गीत में एक सोलफुल क्वालिटी आ जाती थी। मन्ना डे जी के साथ रफी साहब का म्यूजिकल इंटरैक्शन तो अपने आप में एक मास्टर क्लास था। श्रोताओं, दोनों टेक्निकली ब्रिलियंट सिंगर्स थे। क्लासिकल बेस, सुरों की पकड़ और डिफिकल्ट पैसेजेस को एफर्टलेस तरीके से गाने की एबिलिटी दोनों में थी। रफी साहब की आवाज की इमोशनल स्पिरिचुअलिटी सुनाई देती थी, जबकि मन्ना डे जी उनके साथ कॉम्पिटिटिव या क्लासिकल स्टाइल सॉन्ग्स में दोनों की वोकल ब्रिलियंट सामने आती थी।

आते क्यों नहीं? जाओ जाओ जाते क्यों नहीं? फूल सा रुख और

चंद न निकला दसक गया शब का अंधियारा दसक गया शब का अंधियारा आओ आओ आते क्यों नहीं जाओ जाओ जाते क्यों नहीं फूल सर रुख और शब

आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, पूछा रुक और शबनम शबनम बन झलक में लुक गए हम, पूछा रुक और

रफी साहब के डुएट सिंगिंग स्टाइल्स को अगर हम समझाना चाहें तो सबसे पहले आता है रोमांटिक डुएट। इस स्टाइल में उनकी आवाज सॉफ्ट, कंट्रोल और डीपली एक्सप्रेसिव होती थी। वो लफ्जों को कभी ओवरसिंग नहीं करते थे। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया जैसे सॉन्ग्स में उनकी वोकल एक्सप्रेशन बहुत सबटल हैं। वो जैसे हर लाइन को दिल से महसूस करके गा रहे हो। दूसरा स्टाइल था प्लेफुल डुएट। इसमें रफी साहब की आवाज में एक यूथफुल स्माइल महसूस होती थी।

उनके प्रोनाउंसिएशन, टाइमिंग और एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल होते थे कि लिसनर को लगता था जैसे दो लोग सामने बैठकर बात कर रहे हो। तीसरा स्टाइल था पैशनेट रोमांटिक डुएट। जब सिचुएशन इंटेंस लव की होती थी, रवि जी अपनी आवाज, अपनी वॉइस को थोड़ा फुला और इमोशनली चार्ज्ड बना देते थे। उनकी आवाज में एक लॉन्गिंग और वार्म्थ आ जाती थी। यही क्वालिटी उनके 1960s और 70s के रोमांटिक डुएट्स में दिखाई देती है। वक्त की कमी की वजह से हमको आपसे इजाजत लेना पड़ रहा है, लेकिन रफी साहब के बारे में इतनी सारी बातें हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले सुनहरे पल कार्यक्रम में हम रफी साहब के और भी स्टाइल्स और डुएट्स के बारे में ही बताते रहेंगे। तब तक नीतू को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, प्रणाम।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: Wednesday 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RN3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market. दिन के 10 बजे से 11 बजे तक पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर तो जरूर हमारा इंतजार करें साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी गुडलैंड्स पोर्ट लुइस रॉसबेल एंड फ्लैक तैयार हो जाइए हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी Sponsored by Lutavere.

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: रेडियो मॉरिशियस
0: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशियस।
1: रेडियो मॉरिशियस
0: रेडियो मॉरिशियस।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: Wednesday 26th of August, save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RN3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain, Goodlands New Market, दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26

अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैग, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.

0: உனத்தில் நீயே நின்றாய்.
1: Wednesday, 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market. दिन के 10 बजे से 11 बजे तक पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ सेव द डेट सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर तो जरूर हमारा इंतजार करें साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी गुडलैंड्स पोर्ट लुइस रॉसवेल एंड फ्लैक तैयार हो जाइए हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी स्पॉन्सर्ड बाय

0: You're listening RM Free
1: Radio. हर पल आपके साथ
0: रेडियो मॉरिशियस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस
0: रेडियो मॉरिशियस
1: रेडियो मॉरिशियस
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में
0: आपके सुनिंग RM Free रेडियो मॉरिशियस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस
0: रेडियो मॉरिशियस
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: Wednesday 26th of August. Save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain Goodlands New Market. दिन के 10 बजे से 11 बजे तक पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ सेव द डेट बुधवार 26 अगस्त हम

मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैग, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। स्पॉन्सर्ड बाय लुटवेयर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: Wednesday 26th of August, save the date. Hoga kuch bahut khas, hoga kuch bahut special. Celebrating the first anniversary of Radio Masti RM2 and Radio Manoranjan RM3. Let's sing together, let's dance together, let's celebrate together. Cake cutting, giveaways distribution, games and gifts. Aur hogi bahut sari masti, jahan hum karenge aap sabka manoranjan. Aap se hum milne aa rahe hain, Goodlands New Market, दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल, दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसवेल मॉल बाय वेस्ट, दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन, शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसवेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए, हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26 ऑफ अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.